सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026, प्रातः के 5:55:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर एक साथ आरंभ होती है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा।

0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के भंडार, रिद्धि सिद्धि के दाता कर दो जीवन का उद्धार। प्रथम पूज्य हे गणपति करो विघ्नों का संहार, आपकी कृपा से हे गणेश हो हर कार्य साकार।

गौरी माँ का रूप निराला, गले में उनके पुष्पों की माला। कठिन तपस्या उन्होंने ठानी, शिव को पाने की है कहानी। शक्ति स्वरूपा माँ कल्याणी, अमृत की वो पावन वाणी। चरणों में जो शीश झुकाते, जीवन में हर सुख वो पाते।

मेरी हर धड़कन में बस उनका ही नाम है, उन्हीं की याद से रोशन मेरा हर सुबह शाम है। खुदा का नूर है उन पर जिन्हें रहमत कहा रब ने, उन्हीं सरकार की तारीफ मेरे हर लफ्ज़ का काम है।

गुरु के वचन है ज्ञान का सार, कर देते भवसागर पार। अंधियारे मन में दीप जलाते, सच्ची राहें सदा दिखाते। झुककर जो इनको अपनाते, इस जीवन में वो हर सुख पाते।

सच्चा है ये राम का नाम, करता सफल सभी के काम। दुख दर्द सब मिट जाते हैं जो भक्ति में रम जाते हैं। मर्यादा का पाठ पढ़ाते, जीवन मार्ग हमें दिखाते। भव सागर से पार उतारें, सबके भाग्य प्रभु सवारें।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आज की वंदना में भावांजलि थी अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, सखावत हुसैन, गोपाल सिंह रागी और लता मंगेशकर की।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: बिना धर्म का जीवन बिना सिद्धांत का जीवन होता है, और बिना सिद्धांत का जीवन वैसा ही है जैसा कि बिना पतवार के जहाज। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना पतवार का जहाज मारा मारा फिरेगा, उसी तरह धर्महीन मनुष्य भी संसार सागर में इधर से उधर मारा मारा फिरेगा और अपने अभीष्ट स्थान तक नहीं पहुंचेगा। धर्म की पहचान तो प्रेम से, दया से और सत्य से होती है। सत्य की हत्या कभी हो ही नहीं सकती। हमारे धर्म का मूल कर्तव्य पालन से मिल सकता है। कर्तव्य पालन में आपको कभी किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता ना होगी। आप केवल परमेश्वर से भयभीत होंगे। जो लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं वे उसके पुजारी नहीं हैं, जो उसका काम करते हैं वे ही पुजारी हैं। उसी प्रकार रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से पेट भरता है। शास्त्र का मुख से उच्चारण करना लाभकारी नहीं है, लाभकारी तो शास्त्र पर अमल करना है। जो घर आर्थिक संकट में भी ईमानदार हैं, असफलताओं में भी निराश नहीं होते, बड़ी बड़ी विपत्ति में भी धैर्य को नहीं खोते, सत्य की रक्षा के बड़े से बड़े वैभव, प्रतिष्ठा, यश, पद आदि को ठोकर मार सकते हैं, कठोर से कठोर और विशाल से विशाल आवरण के भीतर छिपे हुए कष्ट की खोज कर सकते हैं, ऐसे मनुष्य सच्चे चमत्कारी हैं। विवेकी मनुष्य ऐसे ही चमत्कारों की पूजा करते हैं। वे भूत, पिशाच, देव आदि चमत्कारों की पूजा नहीं करते। अगर हम अहिंसात्मक प्रयत्न द्वारा अपना ध्येय प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो लाखों स्त्री पुरुष शराब, अफीम वगैरह नशीली चीजों के व्यसन के शिकार हो रहे हैं, उनके भाग्य का निर्णय हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। स्थायी और स्वास्थ्य पूर्ण मुक्ति भीतर से ही आती है, यानी आत्मशुद्धि से ही उद्भूत होती है। देवताओं की पूजा और वंदना से दूर रहने पर भी जो स्त्री अपने स्वामी की सेवा में लगी रहती है, वह उस सेवा के प्रभाव से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। स्त्री क्या है? साक्षात त्याग की मूर्ति है। जब कोई स्त्री किसी काम में जी जान से लग जाती है तो वो पहाड़ को भी हिला देती है। पति पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं। प्रेम और सत्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। जिस मैत्री और घनिष्ठता का आधार सत्य नहीं है वो प्रेम पूर्ण नहीं, मोह भरा अस्थाई खिंचाव भर है। कोई भी युवक जो दहेज को विवाह की शर्त बनाता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी जाति का अपमान करता है। देश में आज बहुत से युवक आंदोलन चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन इस किस्म के सवालों को अपने हाथ में लें। ऐसे संगठनों को कोई ठोस सुधार कार्य उन्हें अपने अंदर से शुरू करने चाहिए। दहेज की इस नीचे गिराने वाली प्रथा के खिलाफ शक्तिशाली लोकमत पैदा करना चाहिए। जो युवक इस पाप के कीचड़ से अपने हाथ गंदे करते हैं उनका समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। लड़कियों के माता पिताओं को अंग्रेजी डिग्रियों का मुंह छोड़ देना चाहिए और अपनी कन्याओं के लिए सच्चे एवं स्त्री जाति के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले सुयोग्य वरों की खोज में अपने प्रांत तथा जाति के तंग दायरों के बाहर जाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। जिसने राग द्वेष को पूरी तरह से जीत लिया है और जो तन मन तथा वचन से सत्य अहिंसा आदि नियमों का पालन करता है उसे सन्यासी कहा जा सकता है। ऐसा सन्यासी निष्काम भाव से सेवा करने में भी अपने जीवन को लगाता है और निर्वाह का आधार भिक्षा समझता है। आश्रमों का बाहरी वेशभूषा से कोई संबंध नहीं है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। स्वास्थ्य संदेश में आज जानकारी का विषय है दंत व मसूड़ों का दर्द। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर हेमलता सक्सेना।
2: श्रोताओं, हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनके इलाज के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं को लेकर के, और विशेष रूप से दांत व मसूड़ों में जब दर्द होता है तो असहनीय पीड़ा होती है, परेशानी का सबब बनता है। क्या कारण है, उपचार कैसे हो सकता है और क्या सावधानी बरत करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमलता सक्सेना, जो कि डेंटल सर्जन हैं जिला चिकित्सालय रामपुर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद विनय जी।
2: डॉक्टर साहब, दांत में जब कोई समस्या होती है तो ऐसा लगता है कि जब तक इसका इलाज न हो जाए तो फिर चैन नहीं पड़ती है, और दर्द जब होता है दांत और मसूड़ों में तो क्या कारण है, कैसे दर्द उत्पन्न हो जाता है?
3: जी विनय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दांत का दर्द ऐसा होता है कि एक बार दर्द शुरू हो तो फिर बर्दाश्त के बाहर होता है, और उसका निवारण बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि दांतों में जो बीमारी होती है वो एक तो दांतों की है, दूसरा दांत मसूड़े के अंदर होते हैं, मसूड़ों की बीमारी होती है। दांत की बीमारी जो है जिसे हम डेंटल केरीज बोलते हैं या दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं, मसूड़े की बीमारी पायरिया होता है।
2: अच्छा।
3: ये दोनों ही बीमारी जिस कारण से होती है वो है हमारी खाने पीने की गलत आदतें और मुंह की स्वच्छता पर ध्यान ना देना।
2: अच्छा।
3: तो अगर हम सही से दांतों को साफ नहीं करेंगे तो दांतों के ऊपर जो भी खाने पीने की चीजें लगी रह जाती हैं, उनसे जो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और डेंटल केरीज के लिए जो
2: जिम्मेदार
3: बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। वो उन खाने पीने की चीजों पर एक्ट करके और विषैले पदार्थ निकालता है जिससे कि हमारे दांत का डीमिनरलाइजेशन यानी कि गलना शुरू हो जाता है, डेंटल डिके शुरू हो जाता है। वहीं से धीमे धीमे पहले हल्के ब्राउन कलर का, फिर ब्लैक कलर का, देन फिर उसके अंदर कैविटी स्टार्ट हो जाती है।
2: अच्छा।
3: पहले छोटा गड्ढा बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, मरीज कहेगा कि मतलब मेरा खाना घुसा और उसने साफ कर लिया, ठीक हो गया। तो हर इंसान को ये लगता है अरे बस खाना निकाल लिया, ठीक हो गया, क्या जरूरत है। लेकिन वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है नीचे की तरफ वो और डीप होता जाता है। फिर एक दिन अचानक से एकदम से दर्द होता है।
2: अच्छा।
3: और या तो पहले ठंडा लगेगा तब भी अवॉइड कर देता है, फिर गर्म लगने लग जाता है, देन उसके बाद पेन शुरू होता है। तो हमको शुरू से ही ध्यान देना है कि हम यदि अपने दांतों को सही से उसका देखरेख रखेंगे और हम देखें कि हमारे दांत के ऊपर कोई सा भी हल्का ब्राउन कलर का, हल्के कत्थई रंग का कोई भी पैच आ गया है या निशान आ गया है, तो हमें फौरन ध्यान देना चाहिए। और वो किस कारण से होगा, वो ये है कि हम यदि खाने पीने की सही से चीजें नहीं खाएंगे। अधिकतर आजकल खाने पीने में क्या आ रहा है, सब मैदे वाली चीजें, मिठाई वाली चीजें,
2: फास्ट फूड,
3: चॉकलेट्स, फास्ट फूड, फल और सब्जियों पर किसी का ध्यान नहीं है। स्पेशली हमारे जो युवा जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं वो सभी इन्हीं चीजों को पसंद करते हैं
2: जी।
3: और ये दांतों के लिए और शरीर दोनों के लिए ही बहुत ही नुकसानदायक है।
2: आपने साफ सफाई का जिक्र किया है जिसके लिए सभी लोग सवेरे उठ करके ब्रशिंग करते हैं, क्या ब्रशिंग का भी कोई एक अच्छा और सही तरीका है, और कभी कभी कुछ लोग सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते हैं?
3: हाँ जी विनय जी, दांतों को साफ करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो कि उचित हम ब्रश का चुनाव करें। ब्रिसल्स उसके सॉफ्ट होने चाहिए, ना ही बहुत हार्ड ना ही बहुत सॉफ्ट। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो वो अच्छे से स्क्रब नहीं कर पाएंगे हमारे दांतों को, और बहुत हार्ड होंगे तो हमारे दांत की जो ऊपर वाली सतह होती है जिसे हम इनामल कहते हैं वो घिस जाती है और सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा गर्म लगना भी शुरू हो सकता है बिना कीड़ा लगे।
2: कोई संबंध नहीं है,
3: नहीं,
2: सिर्फ आम धारणा है।
3: हाँ जी,
2: सावधानी की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये समस्या ज्यादा न बढ़ने पाए तो। और कभी कभी मसूड़ों में स्वेलिंग भी हो जाती है, ये किस वजह से होती है और उसका निदान कैसे हो सकता है?
3: सभी का, कैविटी का भी और पायरिया रोग दोनों का ही निवारण जो है सफाई से ही है। स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। वैसे ही मुंह के अंदर यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे मसूड़े और दांत के बीच में अटैचमेंट कमजोर पड़ जाता है और एक गैप आ जाता है, फिर धीमे धीमे करके दांत हिलने लग जाता है और गिर जाता है, ये पायरिया रोग होता है
2: जी। तो तुरंत अपने डेंटल सर्जन को या डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। डॉक्टर हेमलता सक्सेना जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और अच्छी जानकारी दी कि यदि कोई दांत संबंधी समस्या है, विशेष रूप से दांत और मसूड़ों में दर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बताएं, और साथ ही साथ सावधानी बरत करके इस समस्या से निदान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद,
3: शुक्रिया।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। जानकारी का विषय था दंत व मसूड़ों का दर्द, और जानकारी दे रही थी डॉक्टर हेमलता सक्सेना।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 339। सुबह 7 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक रंग, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मदन मोहन ब्रजवासी द्वारा गाए कुछ लोकगीत। सुबह 7:31 पर प्रस्तुत होगा फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीत कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स के अंतर्गत। सुबह 9:30 पर प्रस्तुत होगा उर्दू प्रोग्राम।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। सुबह 10:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 90 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम धरोहर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 12। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन।

दोपहर 12:10 पर प्रस्तुत होगा ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत कार्यक्रम गीत आपके नाम। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत शशिलता द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

हमारी आज की दूसरी सभा का आरंभ होगा शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम 5:45 पर प्रस्तुत होगा किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 339। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और संगीत है सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 339।

श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। श्री राम के वाणों ने सर्प के समान उड़ते हुए रावण के सारथी और उसके रथ के घोड़ों का संहार कर दिया है। वो शीघ्र दूसरे रथ पर जा चढ़ा और उसने अपने अस्त्रों से श्री राम के रथ में जुटे घोड़ों का हनन कर दिया। क्रुद्ध होकर श्री राम ने उसके दसों सिरों में 10-10 वाण मारे। रक्त की धाराएं बह चली। वो दौड़कर उनकी ओर बढ़ा। श्री राम के वाणों से उसके सिर और 20 भुजाएं कट कट कर गिरने लगीं, किंतु कटने के बाद उसके सिर फिर उगाते हैं, भुजाएं यथावत हो जाती हैं। ये क्रम टूटता नहीं। सारा आकाश रावण के कटे सिरों और भुजाओं से पट गया है, किंतु वो पूर्ववत वाण संधान करता जा रहा है। अपने वाणों से उसने श्री राम के रथ को इस प्रकार ढक दिया है कि वो दिखाई नहीं देता। आसमान में छाए रावण के सिरों से निरंतर चुनौती भरा उद्घोष हो रहा है। कहां है वानर राज सुग्रीव, लक्ष्मण कहां है, और कहां है स्वयं राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 339। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत मदन मोहन ब्रजवासी द्वारा गाए कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कुछ जरूरी संदेश।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
2: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संसुष्टि की गई है।
4: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
2: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान दो कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
5: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, उसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत दो टीमें हम लोगों ने बनाई हैं। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
6: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
2: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालोन ज्यादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
7: भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर हजार पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात यह आई कि कुछ ग्रंथ यहां पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहां भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
2: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा।
8: हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेट को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो डीपीआर इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेट के अंदर आएगा उसका पैसा मेट का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
2: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
9: G20 जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
10: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
11: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
10: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
12: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और

FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका रेडियो साथी अनिल राजपूत। आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में अपने समस्त श्रोताओं का आत्मीय अभिनंदन और खैर मकदम करता हूं। श्रोताओं, जब जब जिंदगी की भीड़ हमें थका देती है, जब शहर का शोर हमारे कानों से उतरकर हमारी रूह तक पहुंच जाता है, तब हमें पहाड़ याद आते हैं। ये पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थरों के ढेर नहीं हैं, ये तो खुदा की वो खूबसूरत किताब हैं जिसके हर पन्ने पर मोहब्बत लिखी हुई है। इनकी ऊंचाइयों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन ने अपने हाथ उठाकर आसमां को छूने की कोशिश की हो, और आसमां वो भी शायद इनसे मोहब्बत करता है। तभी तो कभी बादलों को चादर उड़ा देता है, तो कभी धूप की सुनहरी चुनरी पहना देता है। और पहाड़ों की खूबसूरती पर किसी ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ आज भी खामोशियों में गुनगुनाते हैं, हवा के साथ मिलकर अनकहे नगमे सुनाते हैं। कभी बादल लिपट जाते हैं इन ऊंचे पहाड़ों से, कभी झरने उतरकर इश्क के किस्से दे जाते हैं। फलक से बात करने का हुनर इनको ही आता है, ज़मीन पर रहकर भी ये आसमां से दिल लगाते हैं। सफ़ेदी ओढ़ कर जब बर्फ़ की चादर ये सोते हैं, तो अपने हुस्न से चांदनी को आईना दिखाते हैं। ये नदियाँ, ये परिंदे, ये महकते फूल और जंगल, सब इनके ही दामन में अपना घर बनाते हैं। शहर की गर्द से थककर जो इनकी तरफ आते हैं, ये उनको अपने आगोश में लेकर मुस्कुराते हैं। ये वादियाँ, ये खुशबू, ये फिजाएँ, ये सब पहाड़ों की मोहब्बत के चर्चे गुनगुनाते हैं। कहीं देवदार की शाखों पे शबनम मुस्कुराती है, कहीं पंछी नए मौसम की खुशखबरी सुनाते हैं। न जाने कौन सी दौलत छुपी है इन पहाड़ों में, फ़कीर इनके आंगन से बादशाह बन के जाते हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, आज 25 जून है। देश और दुनिया में आज के दिन क्या कुछ हुआ था खास, आइए जानते हैं आज का इतिहास। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की। 25 जून 1983 को कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर इतिहास रचा। फाइनल में वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर भारत ने अपना पहला प्रतिष्ठित विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 25 जून 1975 को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 25 जून 1932 को ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। आज के दिन 1998 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 9 दिन की यात्रा पर चीन गए। 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूगोस्लाविया राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की गिरफ्तारी की सूचना देने पर $50,00,000 के इनाम की घोषणा की गई। वर्ष 2009 में आज के दिन संगीत और नृत्य की नई परिभाषा लिखने वाले माइकल जैक्सन का निधन हुआ। वर्ष 2002 में अफगानिस्तान में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। वर्ष 2004 में रूस द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया और वर्ष 2005 में अहमदी नेजाद ईरान के राष्ट्रपति बने। श्रोताओं, अब नज़र डालते हैं आज के दिन जन्मे और हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गए विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में। वर्ष 1900 में ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय रहे लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म हुआ। वर्ष 1903 में प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक चंद्रशेखर पांडे का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। वर्ष 1908 में महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ रहीं सुचेता कृपलानी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक रहे मदन मोहन का जन्म आज के दिन वर्ष 1924 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक सुधा सिंह का जन्म भी वर्ष 1986 में आज के दिन हुआ और आज के दिन वर्ष 1974 में बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री करिश्मा कपूर का भी जन्म हुआ। वहीं गोवा की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी रहीं मोहन रानाडे का 2019 में आज के दिन निधन हुआ और राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री रहे शिव चरण माथुर का वर्ष 2009 में आज के दिन निधन हुआ। श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। अब एक नज़र डालते हैं आज की ज़िले की मुख्य खबरों पर। लखनऊ कोचिंग सेंटर में अग्निकांड में छात्रों की मौत के बाद जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर बुधवार को रामपुर के 22 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। नगर मैजिस्ट्रेट एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों का अभियान चलाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने टीम के साथ जिले की विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर भवन की संरचनात्मकता, सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का परीक्षण किया। प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने और रजिस्ट्री कार्यालयों के संचालन में फ्रेंचाइजी व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को उप निबंधक कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को तजाकिस्तान गणराज्य के राजदूत लोकोमन बोबो कालोजोदा रामपुर पहुंचे। उन्होंने गांधी समाधि में पुष्प अर्पित किए। वहीं रजा लाइब्रेरी के निर्देशक डॉक्टर पुष्कर मिश्र के मध्य सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदान प्रदान तथा भारतीय तजाकिस्तान संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग ने जनपद में सरकारी भवनों की मरम्मत और रंगाई पुताई के कार्यों के लिए 30,00,000 रुपए खर्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रांतीय खंड रामपुर की ओर से अल्पकालीन ई निविदा जारी की गई है। जिला अस्पताल में बुधवार को अल्ट्रासाउंड विभाग में तैनात रेडियोलॉजिस्ट के करीब 2 घंटे देरी से पहुंचने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन के नियमानुसार चिकित्सक को सुबह 8 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचना होता है, लेकिन वो 10 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड कक्ष में पहुंचे। इससे मरीजों को भूख, दर्द और उमस के बीच लंबा इंतजार करना पड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दर्शन में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने दिव्यांग नुनुकी को मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल प्रदान की। ट्राईसाइकिल पाकर नुनुकी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जिले के परिषदीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विद्यालय खुलने के साथ ही बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान शुरू करेगा। और मनसब अली स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए खान कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट में के पहले सेमीफाइनल में यंग मैन क्लब ने मिनी स्टेडियम क्लब को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। श्रोताओं, ये थी रामपुर ज़िले की मुख्य खबरें। अब आपको बताते हैं आज के मौसम का हाल। आज अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रोताओं, ये थी जानकारी मौसम की। अब समय है मनोरंजन का, तो आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

शुदा हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी धुनें समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। जब भी गज़लों की नज़ाकत, सुरों की मिठास और भावनाओं की गहराई की बात होती है तो एक नाम स्वतः ही सामने आ जाता है और वो नाम है मदन मोहन। आज हम याद कर रहे हैं उस महान संगीतकार को जिन्हें संगीत प्रेमी प्यार से गज़लों का शहंशाह भी कहते हैं। 25 जून 1924 को उनका जन्म बगदाद, इराक में हुआ था, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली कार्यरत थे। बाद में उनका परिवार भारत लौट आया और यहीं से शुरू हुई उस कलाकार की यात्रा जिसने हिंदी फिल्म संगीत को अनमोल धरोहरें दी। मदन मोहन का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी, हालांकि उन्हें संगीत की कोई लंबी औपचारिक शिक्षा नहीं ली। उनके भीतर सुरों को समझने और उन्हें भावनाओं में ढालने की एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। बहुत कम लोगों को ये पता है कि उन्होंने कुछ समय तक सेना में भी सेवा दी थी, लेकिन उनका मन संगीत की दुनिया में बसता था। सेना छोड़ने के बाद वो आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहाँ उन्हें बेगम अख्तर, तलत महमूद, उस्ताद विलायत खान और कई महान संगीतकारों, संगीतज्ञों से सानिध्य का अवसर मिला। यही वो दौर था जिसने उनकी संगीत सोच को और अधिक परिपक्व बनाया। फिल्मी दुनिया में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। संघर्ष के कई वर्षों के बाद उन्हें संगीत निर्देशन का अवसर मिला, लेकिन सफलता धीरे धीरे आई। मदन मोहन का संगीत उस दौर के प्रचलित संगीत से अलग था। वो शोर नहीं, सुरों की आत्मा पर विश्वास करते थे। वो ऐसी धुनें बनाते थे जो सीधे दिल में उतर जाती थीं। अगर मदन मोहन के संगीत की बात हो और लता मंगेशकर का नाम ना आए तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। मदन मोहन और लता मंगेशकर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को अनेक कालजयी गीत दिए। लता जी स्वयं कई अवसरों पर कह चुकी थीं कि मदन मोहन की धुनें गाने में जितनी चुनौतीपूर्ण होती हैं उतनी ही सुंदर भी। मोहम्मद रफ़ी के साथ भी उनकी जोड़ी बेहद सफल रही। रफ़ी साहब की आवाज़ में तेरी आँखों के सिवा, तुम जो मिल गए हो, रंग और नूर की बारात जैसे गीत आज भी सदाबहार हैं। वहीं तलत महमूद की मखमली आवाज़ को भी मदन मोहन ने खूब संवारा। मदन मोहन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी गज़ल नुमा धुनें। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को लेकर लोकप्रिय संगीत के साथ इस तरह जोड़ा कि आम श्रोता भी उससे जुड़ गया। उनकी रचनाओं में दर्द भी था, प्रेम भी था, विरह भी था और उम्मीद भी। यही कारण है कि उन्हें अक्सर हिंदी फिल्म संगीत का सबसे बड़ा गज़ल विशेषज्ञ संगीतकार कहा जाता है। साल 1970 में आई फिल्म दस्तक उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। ये सम्मान उनके असाधारण संगीत कौशल की आधिकारिक पहचान था। 14 जुलाई 1975 को मात्र 51 वर्ष की आयु में ये महान संगीतकार इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन कलाकार शरीर से जाता है, कला से नहीं। मदन मोहन की धुनें आज भी जीवित हैं और शायद आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेंगी। आज जब हम मदन मोहन को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं तो ये केवल एक संगीतकार को याद करना नहीं है, ये उस संवेदनशील कलाकार को नमन है जिसने सुरों को भावनाओं की भाषा बना दिया, जिसने गज़ल को लोकप्रिय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने हमें ऐसे गीत दिए जिन्हें सुनकर आज भी वक्त ठहर सा जाता है। श्रोताओं, आइए इस अवसर पर हम आपको सुनवाते हैं उनके संगीत से सजे इस सदाबहार गीत को। इस गीत को महसूस करें और उस विरासत को सलाम करें जो भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
6: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय

0: कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
4: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed four major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress

0: has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Uttarakhand and parts of the northeastern region during the next 2 to 3 days. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thanks, Shagun. All dailies lead with Iranian President Masoud Pezeshkian's formal invitation to Prime Minister Modi to attend the former Supreme Leader's funeral. Iran invites Prime Minister for Khamenei's July funeral. India yet to decide, writes the Tribune. Shiv Sena UBT to lose Parliament office, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. Adab. खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखाधड़ी की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखादेही से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चार रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में चार बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेरे इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधेही के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए ई जीओ एफआईआर मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाज को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफुजात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आजादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आजादी समेत उन हुकूक को खत्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हुकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिस कर दी गई थी। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आजादी की तहफुज का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वजीर आजम लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जांच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम कर रही है जो इमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
2: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपू लेक दर्रे के नजदीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजिरों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाजत दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपू लेक दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से नबी ढांग के नजदीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
5: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घूड़े कचरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई आईटीबीपी आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप ये पड़ाव चयनित किया गया है।
4: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था लेकिन 2020 में कोविड-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैनुल अक्वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वुजराए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोजा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन मुमालिक के तवानाई के वुजरा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तावुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तावुन और पायदारी का कयाम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा जो देही तरक्की में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मजकूरा एक रोजा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती जरूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग, द इंडिया एआई मिशन, सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकतदार देही तरक्की को फरोग देने में मस्नूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक वफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिला अदालत की जज डेनिस कैस्पर का यह फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा उबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को देता है, न कि सदर को, और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिन्यान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक्किदा पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4th मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद टी20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की जरूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक्वा मुत्तहदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
2: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: शुदा, अभी आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज़ में फिल्म जबरिया जोड़ी का ये गीत।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत है के और शिल्पा राव की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हाईजैक।

शुदा, अभी आपने सुना नेहा कक्कड़ और मैंज म्यूज़िक को फिल्म गुड न्यूज़ में। कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का अगला गीत है राहत फ़तेह अली ख़ान और आसीस कौर की आवाज़ों में। फिल्म है सिम्बा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मौसम का ये गीत। आवाज़ थी मिथुन की। कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म तेरे संग से, और स्वर हैं अरिजीत सिंह और आकांक्षा शर्मा के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
2: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उनको रिवाइवल के प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए जिसमें जो पहले 2 शुगर मिल रिवाइव किए गए।
1: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषयक पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान के तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाए तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से

0: सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिलाधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
1: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे, जिनकी निगरानी के लिए 1400 के ऊपर के सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। जुलूस की जो संख्या है वो 127 है। इसको लेकर के पुलिस की सभी ड्यूटीज लग गई है, एज वेल एज प्रशासन की ओर से भी सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है।
0: बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असम प्रभारी और पूर्व लोकसभा सांसद हरेश द्विवेदी ने बस्ती स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। योग दिवस इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बस्ती जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में मानक की चेकिंग की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत एंट्री और एग्जिटिंग की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और DIOs लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले, तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
3: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डायरेक्ट परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रही। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णालान में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया,
4: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहाँ से 5:25 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
3: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं बीते दिनों राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्यप्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिला अधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
5: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:24 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गौरव भारत देश के।
8: ख्वाजा बंदे नवाज केसुदराज, जिनका असली नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी था, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनका जन्म 1321 ईस्वी में दिल्ली, भारत में हुआ था। वे भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी मत के प्रमुख प्रचारक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ख्वाजा बंदे नवाज का नाम सूफी संतों की महान परंपरा में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। ख्वाजा बंदे नवाज का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता सैयद यूसुफ हुसैनी एक प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान थे। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही प्राप्त की। बहुत कम उम्र में ही वे सूफी मत की ओर आकर्षित हो गए और अपने गुरु हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के शिष्य बन गए। उनके गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी और सूफी मत के गहरे रहस्यों से अवगत कराया। ख्वाजा बंदे नवाज ने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और सेवा में बिताया। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया। वे धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाओं में धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का महत्व बताया गया। ख्वाजा बंदे नवाज की शिक्षाएं मुख्य रूप से प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा पर आधारित थीं। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति वही है जो दिल से की जाए और दूसरों की भलाई में समर्पित हो। उनकी रचनाएं और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और सूफी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य किए और समाज में समानता का संदेश फैलाया। ख्वाजा बंदे नवाज का अधिकांश जीवन गुलबर्गा, जो अब कर्नाटक में है, में बीता। वहां उन्होंने एक सूफी केंद्र स्थापित किया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में सुधार किया। उनके दरगाह गुलबर्गा शरीफ आज भी लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल यहां उर्स मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ख्वाजा बंदे नवाज का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, सेवा और सद्भाव का संदेश देती हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें सच्ची भक्ति और मानवता की सेवा का महत्व सिखाता है। ख्वाजा बंदे नवाज के सिद्धांत और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं।
7: अभी आप सुन रहे थे गौरव भारत देश के।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बा में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है उर्दू प्रोग्राम। आज आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रही हैं मारिया खुशनूद।

0: हुसैन की हो।
1: सुभानअल्लाह।
2: और यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमाएं कि राहिब को साथ दे दिए बेटे हुसैन।
0: क्या कहें।

0: क्या कहें।
1: किस्मत पे नाज इसलिए करते रहो।
0: समीन ये थे अपने खूबसूरत कलाम के साथ जनाब अलीम हुसैन अलीम सैथली, और इसी के साथ अब हम दावत कलाम देने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल नईम खां शबाब।
2: हज़रत सैदना इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा नाम जो तौरात शरीफ में आया है वो शब्बीर है, शब्बीर अलैहिस्सलाम। तो ये मुनक़बत उन्हीं के उनवान से है, मुलाहिज़ा फरमाएं। जिस्म मेरा रूह मेरी दिल मेरा शब्बीर का,

0: गया, चश्मे नम से जब भी देखा ताजिया
1: सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया,
0: शब्बीर,
1: बहुत
0: चश्मे
1: बढ़िया,
0: नम से जब
1: सुभान
0: भी
1: अल्लाह, सुभान अल्लाह,
0: देखा ताजिया
1: ताजिया
0: शब्बीर
1: शब्बीर
0: का। और
1: का।
0: आखिरी शेर मुलायदा फरमाए कि ये
1: इरशाद,
0: अजानों की सदाएं
1: ये अजानों की
0: सदकाए
1: सदाएं,
0: शब्बीर हैं,
1: बेशक
0: शिश जहत में हो रहा है तज़करा
1: शब्बीर का,
0: शब्बीर
1: बहुत बढ़िया,
0: का। मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलायदा फरमाले के घर बलाओं से बचाने को सजा लीजिए शबाब,
1: वाह वाह।
0: घर बला

0: सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत
1: एक
0: बढ़िया।
1: आलम अब्बास का, एक
0: या
1: ताजिया
0: शब्बीर का।
1: शब्बीर का। शुक्रिया आलम सर।
0: ये थे सामईन डॉक्टर अब्दुल नईम खां शबाब, जिन्होंने अपना कलाम आप सामईन के दरमियान पेश किया। और इसी के साथ हमारे बीच एक नहायत मोतबर और बुजुर्ग शायर मौजूद हैं, जनाब मुख्तार अहमद मुख्तार दिलहरी साहब, जो अपना कलाम आपके दरमियान पेश करने की सआदत हासिल करेंगे।
2: कहता हूँ कि वाह क्या एजाज था शब्बीर की तकरीर में, वाह क्या एजाज था शब्बीर की तकरीर में, भर दिया जोशे शहादत हर जवानों पीर में।
0: बहुत सुभान,
2: वाह क्या एजाज था शब्बीर की तकरीर में, भर दिया जोशे शहादत हर जवानों पीर में, और हौसला ही हौसला था असगरे बेशीर में।
0: हौसला ही हौसला था असगरे बेशीर में,
2: असगरे बेशीर में मुस्कुराकर खून से तारीख लिख दी तीर में।
0: बहुत बढ़िया, क्या
2: हौसला ही हौसला था असगरे बेशीर में, मुस्कुराकर खून से तारीख लिख दी तीर में। मुकबत का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा। कहता हूँ कि हर एक चरागे दिल का हवाला है करबला, हर एक चरागे दिल का
0: हवाला है
2: करबला, करबला इस्लाम के चमन का उजाला है करबला,
0: इस्लाम के चमन
2: इस्लाम
0: का उजाला
2: के
0: है करबला। बहुत बढ़िया,
2: चमन का उजाला है करबला, और हर जुल्म के खिलाफ है सब्रो रजा का बाब। मुरादा कीजिए,
0: हर
2: जुल्म के खिलाफ है सब्रो रजा का बाब, सदियों से एक पयाम निराला है करबला।
0: बहुत खूब,
2: सदियों से एक पयाम
0: निराला,
2: निराला
0: है
2: है करबला। बहुत शुक्रिया। और दीने नबी बचाने का जब आया था सवाल,
0: दीने नबी बचाने
2: दीने
0: का
2: नबी
0: था
2: बचाने
0: सवाल,
2: का जब आया था सवाल, तब से लहू ने तुझको संभाला है
0: करबला।
2: करबला, और शब्बीर के जलाल का उनवान बन गई,
0: शब्बीर के जलाल
2: शब्बीर के जलाल का उनवान बन गई, बातिल के वास्ते तो हवाला है करबला,
0: बातिल के
2: बातिल
0: वास्ते
2: के
0: तो
2: वास्ते तो हवाला है करबला। नेजे पर भी बुलंद रहा सर हुसैन का, सजदों का ये नसीब निराला है करबला, सजदों का ये नसीब निराला है करबला, और प्यासे लबों पे सब

0: का नगमा है आज तक के
1: अल्लाह
0: प्यासे
1: सुभान
0: लबों
1: अल्लाह
0: पा, सब्र का नगमा है आज तक तारीख के लबों पा, उजाला
1: उजाला है
0: है
1: करबला।
0: करबला
1: सुभान अल्लाह
0: और
1: सुभान अल्लाह
0: कुरान की
1: सुभान
0: जबां पे वफा की जो बात है,
2: कुरान की
1: सुभान
2: ज़बाँ पे वफा
1: कुरान
2: की जो
0: की
2: बात है,
0: जबां पा
1: वफा की
0: वफा
1: जो
0: की
1: बात
0: जो
1: है
0: बात है, उसका ही हरफे अरफा ओ आला है
2: करबला।
0: करबला।
1: वाह वाह
2: सुभान अल्लाह, क्या कहें।
0: कुरान की जबां पे वफा की जो बात है, उसका ही हरफे अरफा ओ आला है
1: करबला
0: करबला। और सजदे में सर फजा में बुलंद आस्तीने हक। मुलाहदा
1: वाह
0: कीजिएगा
2: सुभान
0: वाह वाह
2: अल्लाह,
1: वाह वाह वाह
0: कि सजदे में सर फजा में बुलंद
1: आस्तीने हक
0: आस्तीने हक,
1: वाह
0: ये एक मार का था जिसने संभाला है
2: करबला,
0: करबला।
1: वाह वाह
0: एक
1: वाह
0: मार का था
1: सुभान अल्लाह,
0: जिसने
1: जिसने संभाला है
0: संभाला है
2: करबला।
0: करबला। जहरा के लाल ने जो दिखाया वो फख्र है,
2: जहरा के
0: वाह
2: लाल ने
0: जहरा
2: जो
0: के लाल
2: दिखाया वो
0: ने जो
2: फख्र है,
0: दिखाया
1: दिखाया वो
0: वो
1: फख्र है,
0: फख्र है।
2: बेशक
0: सजदे का ताज शाही रिसाला है
2: करबला।
0: करबला।
1: वाह फिर बहुत अच्छा
0: सजदे का
1: वाह
0: ताज शाही रिसाला है करबला, इसके बगैर कैसे गुजारेंगे जिंदगी,
2: इसके
0: वाह
2: बगैर
0: इसके
2: कैसे
0: बगैर
2: गुजारेंगे जिंदगी,
0: कैसे
2: कैसे
0: गुजारेंगे
1: गुजारेंगे
0: जिंदगी, हमसे कलंदरों का दुशाला है
2: करबला।
0: करबला।
1: वाह
0: इसके
1: वाह
0: बगैर,
1: वाह
0: बहुत शुक्रिया, इसके
1: वाह
0: बगैर कैसे गुजारेंगे जिंदगी,
1: वाह वाह
0: हमसे कलंदरों का दुशाला है करबला।
1: करबला वाह
0: और
1: वाह वाह
0: मुख्तार देखने को फरिश्ते भी आ गए,
2: मुख्तार
0: वाह
2: देखने को
0: मुख्तार
2: फरिश्ते भी
0: देखने
2: आ गए,
0: देखने
1: फरिश्ते भी
0: को
1: आ गए।
0: फरिश्ते भी आ गए,
1: बहुत अच्छा
0: ये करबला है। अर्श का हाला
1: अल्लाह है
0: है
1: करबला
0: करबला,
1: वाह वाह
0: ये
1: वाह क्या कहने,
0: करबला है,
1: हाला बहुत
0: अर्श
1: अच्छा
0: का
1: अर्श का हाला
0: हाला
1: है
0: है
1: करबला वाह वाह वाह।
0: करबला। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे मुसालमा हज़रत इमाम हुसैन की याद में। इसमें शिरकत करने वाली मेहमान हस्तियां थीं जनाब मोहम्मद अली, जनाब अलीम हुसैन, डॉक्टर अब्दुल नईम खां और जनाब मुख्तार अहमद। मेज़बानी कर रही थी शीबा नूर साहिबा। आइए सामीन, अब करबला के वाक़यात और शोधाए करबला के वाक़यात को समाप्त करते हैं जनाब कमर हसन नकवी के नोहे के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। प्रोग्राम पेश कर रही थी मारिया खुशनूद। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फरमाइशी प्रोग्राम आपके अनुरोध पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म है अलग अलग। और इस गीत को सुनना चाहा है जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है फिल्म अलग अलग का ये गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, आकाशवाणी रामपुर से। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से। आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, मकसूद हुसैन और नाजिम अली। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, ग़ुलाम साहब राही और महराज जहाँ। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान और डॉक्टर हुकुम सिंह। बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमेधु कुमार दामोदर। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर और इरफान कुरेशी। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्निशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है विनोद राठौड़ की आवाज़ में, फिल्म है बेखुदी। और इस गीत को सुनने की पेशकश की है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पोंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। किदवई नगर एटा से जमील अख्तर, रेशमा यास्मीन, अदीबा जमील, बुशरा और असरा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाद अंसारी, वसीम अकरम, सोनम, मियाँ कुरेशी और असलम सैफी। ज़िला अमरोहा नई बस्ती पदई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा, शकील, सलीम, फ़हीम और यासीन अंसारी। मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका घयाल और गजानन घयाल। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता, संजना खड़से, गणेश, कार्तिक खड़से, मालती, स्वाति और प्रयाग चौधरी। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है विनोद राठौड़ की आवाज़ में फिल्म बेखुदी का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपके अनुरोध पर का अंतिम गीत है फिल्म लैला मजनू से और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है शबाजपुर कलां कस्बा पाकवाड़ा से मज़ाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईस अनास, मुजफ्फिकर बाबू, मजहर आसिम और सुमैया महक। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल और सीमा। शेरकोट ज़िला बिजनौर से वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है फ़िल्म लैला मजनू का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसके अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म कयामत के इस गीत में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर आकाशवाणी रामपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत है उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म है कोयला।

शुदा, अभी आपने सुना पंकज उदास और साधना सरगम को फिल्म मोहरा के इस गीत में। कार्यक्रम सुनहरा दौर का अंतिम गीत है फिल्म राजा से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आपने सुने 90 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक और फन बेमिसाल है। आज सुनिए इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 12।

0: नवाबों की सावनी मनाने की अजब ही शान थी। नवाब रज़ा अली खां की बेगम राजमाता रफ़त ज़मानी बेगम जहां आरा हबीबुल्ला के एक खत के जवाब में लिखती हैं,
1: मेरी सावनी की रस्में तकरीब सरकार नवाब हामिद अली खां ऑफ रामपुर ने बड़ी धूमधाम से 1912 में मनाई थी। बागे बेनजीर में पर्दे का मुकम्मल इंतजाम था। चारों तरफ कनातें गार्ड्स का पहरा लग गया था। क्या मजाल की परिंदा भी पर मार सके। तवाइफें और मीरासने दूर दूर से बुलाई गई थीं। कलकत्ते वाली गौहरजान, जोहराबाई आगरे वाली, बनारस से राजेश्वरी बाई और नाम याद नहीं आ रहे हैं। सुबह से मेहमानों का मजमा बागे बेनजीर में जमा हो गया था। अहले खानदान, तमाम बेगमात और मखसूस मेहमान कोठी बेनजीर में ठहरे हुए थे। सरकार वाला नवाब हामिद अली खां के लिए चहल चोबा शामियाना सजा दिया गया था, जिसमें छोटी छोटी छोलदारियां भी थी। हर शजर से मुख्तलिफ मल्हारे तरन्नुम रेस थी। मेहमानों के लिए पकवान के खुवान मुहैया कर दिए गए। कहारियां, महारानियां, जर्क बर्क लिबास, नुकरई जेवरात से सर से पातक गर्क, पटपटी के लहंगे, गहरे गहरे रंग की चोलियां और उन पर लाल धानी चुनरिया ओढ़े हुए कानों और लगनों में पिसी हुई मेहंदी तकसीम कर रही थी। हजारों खुशनुमा चुनरिया जितने भी मेहमान आते थे सबको अता होती थी। यहाँ तक कि अमले यानी नौकरों में भी कोई बाकी नहीं रहा। मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगी। कारचोबी जोड़ा, जिसकी तारबाने की ओढ़नी खास तौर से बनारस में सब्ज धारी से तैयार हुई थी, वो पहनाया गया। तिलाई यानी सोने की खड़ावें, जिनके घुंघरू हर कदम पर नगमा जन थे, पहनाई गई। बरसाती में पचरंगी डोरियों का झूला पड़ा था, जिसमें गंगा जमनी पटरा झोंके खा रहा था। नवाब रज़ा अली खां कमखुवान की शेरवानी और कारचोबी टोपी में तशरीफ़ लाए। हम दोनों को बिस्मिल्ला कहकर झूले में बिठाया गया। सरकार नवाब हामिद अली खां ने 101 अशरफियां निछावर की और झूले की डोरी को हिलाया। बस फिर क्या था, तवाइफों ने बयक आवाज़ सुरीली आवाज़ में गाना शुरू किया।

सिर्फ रामपुर के ही नहीं, टोक के रोहिला भी मौसमे बहार का मजा लेना, झूला झूलना नहीं भूले। चार बैत गो नूर की मल्हार वहां आज भी गाई जाती है।

बरसात का मौसम किसानों के लिए वरदान होता है। जब आकाश पर काली घटाएं छा जाती हैं तो मुसलमान कहते हैं कि अब्रे रहमत आ गया, गोया बारिश अल्लाह की रहमत है। देहात की औरतें बरसात का स्वागत पारंपरिक तरीकों से झूला गीत गाकर करती हैं।

लेकिन मुसलमान औरतों का कोई रिवायती झूला गीत नहीं। जो पठान औरतें गांवों में रहती हैं, वो शहर वालियों की तरह बरसातियां गाती हैं।

0: जाने।
1: बेशक चाहे चार बैते हों या मल्हारे, ये सिर्फ शहरी रुहेलों का लोकगीत या पारंपरिक गाना है जो रुहेला जागीरदारों या जिम्मेदारों के जरिए गांवों में पहुंचा और उन तक ही सीमित रहा। जब तक जागीरदार और जिम्मेदार बाकी रहे तो गांवों में चार बैतों के जलसे भी होते रहे, लेकिन जिम्मेदार खत्म होने के बाद चार बैत के जलसे भी खत्म हो गए। हाँ, जब कभी गांव के मजारों पर उर्स होता है तो चार बैत के जलसे भी होते हैं।

0: करना। देखिए चार वेद का जो सिलसिला है अब कम तिब्बती ख़त्म ही हो चुका है और सिर्फ शादियों में या फिर मजार शरीफ पर उर्स में वगैरह में ही होती हैं, ख़त्म हो चुका है।
1: चार वेद की जुबान इब्तिदा में अवामी जुबान रही, अगर उसे फन शायरी और उरूज यानी मीटर पर परखा जाए तो इसमें जुबान और उरूज की बहुत सी कमियां नजर आएंगी, लेकिन हयत यानी फॉर्मेट और मौजूआत के लिहाज से उर्दू अदब की कोई भी सिन्फ शायरी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत और अवध की हुकूमत पर सवाल आया तो फौजी ताकत कमजोर हो गई, दरबारों में बहादुर फौजियों की जगह भांड हिजड़े और तवाइफों का राज हो गया, जो हुकूमत के जवाल का सबब बना। इस तारीखी हकीकत को महबूब अली ने चार बैत शहर आशोब में बयान किया है।
2: कदर गई सिपाह की इसलिए सिपाह पे ख्वारी है, हौसला जाता रहा उस वक्त में सरदार का, नाम नहीं सुनने में आता कहीं रोजगार का, है ये इरादा हर एक पैदल और सवार का, पहुँचे इस्फहान में गर्दिश में कलम जारी है, कदर गई सिपाह की इसलिए सिपाह पे ख्वारी है। कहते मरासी के तई लाखों की बख्शिश करें, जो के हैं अकदार सिपाही वही भूखे मरें, बू नहीं ईमान की जो इनमें खुदा से डरें, नफ्स है हमारा इनका रूह इन्हों की नारी है, कदर गई सिपाह की इसलिए सिपाह पे ख्वारी है। बज रहा तबला सरंगी हो रहा है राग रंग, हाथ में शीशा शराब का और घुट रहा है बंग, जाके जो महफिल में इनको देखा तो कुछ और है ढंग, चल रहा है दौर खूब हो रही मैं ख्वारी है, कदर गई सिपाह की इसलिए सिपाह पे ख्वारी है। बेगमों के बाल खुले मुख पे गले हार हैं, मिस्सी से आलूदा लब हैं सीने तरहदार हैं, नर्म शिकम पाएचे फर्शी के गरारे हैं, चुलबुली हंसे हैं सिवा बातों में तर्रारी है, कदर गई सिपाह की इसलिए सिपाह पे ख्वारी है।

और फन बेमिसाल है। अभी आपने चार बैत के सफर पर आधारित इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी सुनी। इस धारावाहिक के लेखक हैं नफी सिद्दीकी। आज के इस एपिसोड में भाग लेने वाले कलाकार थे सैयद मोहम्मद आदिल, अख्तर रिजवी और मुन्ने भाई। गायन स्वर गीता पंत, विनीता जोशी, मुसर्रत और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। सहायक प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता हैं मनदीप कौर।

0: मैं प्लास्टिक। चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में।
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन। तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो साथी अपर्णा का नमस्कार। श्रोताओं, हर दिन ये प्रोग्राम हम आप तक लेकर आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो प्रोग्राम और भी खास हो जाता है, और वो यूं क्योंकि हमारे श्रोताओं द्वारा भेजी गई शब्दावलियां हमें इस प्रोग्राम में मिलती हैं। आज यानी गुरुवार का दिन है और आज भी हमारे श्रोताओं ने खूबसूरत जज्बात हम तक लिख भेजे हैं, और देर ना करते हुए हम चाहते हैं कि ये जज्बात हमारे बाकी के श्रोताओं तक भी पहुँचें। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत शब्दावली के साथ, और वो खूबसूरत और भी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें किसी की खूबसूरती का जिक्र शामिल है। जी हाँ, ये शब्दावली हमें लिख भेजी है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराग बेनारा ने। ये लिखते हैं, नारी बीच साड़ी में लगे जैसे श्रृंगार खुद उतर आया हो, शादी बीच जब वो चले तो महफिल में चांदनी से बिखर जाए। साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये नारी की पहचान और संस्कृति का हिस्सा है। रंग बिरंगे धागों से बुनी हर मौके पर ये साड़ी अपना रंग बदल लेती है। शादी में लाल, त्योहारों में चमकीली और रोजमर्रा में हल्की सादी। और जब कोई औरत साड़ी पहनती है तो उसके चलने के अंदाज में, पल्लू संभालने के तरीके में एक अलग ही नजाकत आ जाती है। ये सादगी में भी शान दिखाती है और ग्लैमर में भी ठहराव रखती है। ये आगे लिखते हैं कि साड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर उम्र, हर शरीर और हर अंदाज को खूबसूरत बना देती है, चाहे बनारसी हो, कांजीवरम हो या सूती, सीधी सादी साड़ी हो या फिर चटक मटक, हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। माँ की अलमारी से मिली पहली साड़ी या शादी पर पहनी वो खास साड़ी, साड़ी पहनने वाली औरत बस खड़ी हो जाए तो भी महफिल में रौनक सी लग जाती है। सादगी में भी ऐसी चमक जैसे चांदनी में हीरा हो, हर लफ्ज में ठहराव वैसा जैसे खामोशी का झरना हो, तीखे नैनों में वो बात कह जाए बिन बोले ही दिल समझ जाता है, नाजुक अंदाज देखे जो कोई बस खो जाता है। सादगी में भी ऐसी चमक के लिए जैसे चांदनी में हीरा जगमगाए, ऐसी ही होती है वो नारी, ऐसी ही होती है वो नारी।

अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे नैन अधर कटि नृत्य दिखावे।

न हो चांद तो तारे अजीब लगते हैं, बिना सनम के नज़ारे अजीब लगते हैं। खुदा किसी को दर्द इश्क मत देना, हमें तो दर्द के मारे अजीब लगते हैं। ये शब्दावली हमें लिख भेजी है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के हमारे श्रोता बीके जौहरी और विनोद अर्पित जौहरी ने। ये लिखते हैं, कहते हैं कि पढ़ना लिखना केवल समय बिताने का एकमात्र साधन नहीं है, ये ज्ञान बढ़ाने का साधन है। इससे सजगता बढ़ती है, बच्चों की जागरूकता बढ़ती है, जिज्ञासा के रचनात्मक अंकुर भी पनपते हैं। पढ़ने से बच्चों की कल्पना का भी विस्तार होता है। लेकिन आज मोबाइल टीवी कंप्यूटर के युग में जब पढ़ाई करते करते दिल की किताब पर किसी का नाम प्यार की स्याही से लिख जाता है, तो क्या ये मुमकिन है कि पढ़ाई लिखाई में फिर दिल लगे? यहाँ तो दूसरी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, दिल में वो किताब बस जाती है जो बड़ी ही रंगीली होती है, रसीली होती है, दिलकश होती है। और ये किताब सामने आते ही दुनिया की सारी बातों से नज़र हट जाती है। दिल की किताब के हर पन्ने पर, दिल की हर धड़कन पर, हर सांस में नाम महबूब लिखा होता है और दिल की बात फिर ज़बां पर आ जाती है। बड़े ही दिलचस्प शेर के साथ इन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया है। ये लिखते हैं, सनम तेरी जुदाई में हमारा मन नहीं लगता, कैसे करें पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मई और जून में जब आता है शादी का सीज़न, बिन तेरे जुलाई में हमारा मन नहीं लगता। जी हाँ, इन्होंने अपनी बात को बखूबी हम सब के सामने बयां किया है कि जब किसी से दिल लग जाए तो वाकई किसी और चीज़ में मन नहीं लगता। लेकिन जब बात पढ़ाई की हो तो यहाँ तो हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई जीवन को बनाती है, और जब जीवन अच्छा होता है, खुशियों से भरा होता है, तो जीवन साथी अच्छा ही मिलता है। इस शब्दावली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इज्जत नगर बरेली के श्रोता बीके जौहरी, विनोद और अर्पित जौहरी को।

ये अगली शब्दावली हमें लिख भेजी है। विद्युत सब स्टेशन के पास से नैनीताल रोड बरेली से हमारी श्रोता अर्चना चौहरी कम्मो ने ये लिखती हैं, देखा जाए तो जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। संसार में एकदम स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि हम अपने सामाजिक संबंधों के माध्यम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर दुनिया में रिश्ते ना होते तो इंसानियत भी ना होती। ये रिश्ते ही हमें प्रेम सिखाते हैं और दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। इन रिश्तों को जोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन रिश्ते टूटते बड़ी ही आसानी से हैं। रिश्तों की इस नाजुक डोर की हिफाजत करना हम सभी का फर्ज है। ये आगे लिखती हैं, इंसान की जबान न सिर्फ रिश्तों को जोड़ने का काम करती है, बल्कि कभी कभी रिश्ते से टूट भी जाते हैं। कहा भी गया है कि बोले हुए शब्द और कमान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आते, इसीलिए इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान की बोली ही ऐसी होती है जो दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।

और अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी शब्दावली ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली के शाहरुन नूर अंसारी साहब की। ये लिखते हैं, उस दौर में गांव की अपनी एक अलग ही पहचान थी। शाम होते ही आकाश का रंग केसरिया हो जाता और पेड़ों की डालियों पर पंछियों का शोर कम होने लगता था। घर घर से चूल्हे का धुआं उठने लगता, जिसकी सोंधी सोंधी महक पूरी हवा में घुल जाती थी। लोग खेतों का काम निपटाकर थके हारे घरों की ओर लौटते, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि होती थी। उस संतुष्टि को शाहरुन का दिल बार बार ढूंढता है। ये लिखते हैं, चौपाल पर बैठकर बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे। वे बातें मोबाइल या इंटरनेट की नहीं, बल्कि रिश्तों की, मिट्टी की और मेहनत की होती थी। उस जमाने के लोग एक दूसरे के सुख दुख में बिन बुलाए शामिल हो जाते थे। कोई बीमार होता तो पड़ोस का व्यक्ति रात भर जागकर उसकी सेवा करता। त्योहारों का पूरा दिन और पूरा हफ्ता पूरा गांव बस एक परिवार की तरह मनाता था, जहां मिठाइयां साझा की जाती थी और हंसी ठिठोली का माहौल पूरे दिन बना रहता था। अब इस हंसी को भी शाहरुन नूर का दिल बार बार ढूंढता है। मनोरंजन का साधन भी बड़ा निराला था। रेडियो की खड़खड़ाहट के बीच जब विविध भारती पर हेलो फरमाइश जैसा कार्यक्रम शुरू होता तो लगता जैसे घर में कोई अपना ही मेहमान आया हो। लोग रेडियो के पास कान लगाकर बैठ जाते और अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार करते। वो छोटा सा प्लास्टिक का रेडियो उस समय के लिए पूरी दुनिया को अपने आप में समेटे हुए था। आज उस रेडियो को भी शाहरुन का दिल बार बार ढूंढता है और ढूंढता रहेगा।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम का समय अब समाप्ति की ओर है। बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता हमें याद रखते हैं, अपने जज्बात, अपने ख्यालात हमारे इस प्रोग्राम में हम तक भेजते हैं, जिसे हम अपने बाकी के श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में भी हमें अपने सुनने वालों की ढेरों शब्दावलियाँ प्राप्त होंगी, दीजिए अपनी रेडियो साथी अपर्णा को इजाज़त। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे मन भावन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी रामपुर है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना बहजोई जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि अजय पुत्र भूरे निवासी कैसोपुर रसेरा जनपद संभल दिनांक 17 मई 2026 से कैसोपुर से लापता हैं। अजय की उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट व रंग गोरा है। जिस किसी व्यक्ति को भी अजय के संबंध में कोई भी जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो, वो कृपया इस पते पर देने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बहजोई जनपद संभल। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9219713377, 92197133377। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि मोहम्मद तनवीर पुत्र गामा निवासी ततारपुर मजरा बटौआ थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल दिनांक 21 दिसंबर 2024 से अपने घर से लापता है। मोहम्मद तनवीर की उम्र करीब 19 वर्ष, कद 4 फुट व रंग सांवला है। इन्होंने फौजी रंग का पजामा और काले रंग की शर्ट पहनी हुई है। जिस किसी व्यक्ति को भी मोहम्मद तनवीर के संबंध में कोई भी जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो, वो कृपया इस पते पर देने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल। संपर्क करने के लिए मोबाइल संख्या है 9454040058, 9454404058। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
4: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
5: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
5: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
6: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
5: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: से नो टू प्लास्टिक।

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके।

0: देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।
1: दिन के 12:10 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म संगीत का फरमाइशी प्रोग्राम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अपर्णा का नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने सुनने वालों के लिए गीतों की ये महफिल लेकर। उम्मीद करते हैं कि आज जो गीत हम आप तक पहुंचाएंगे वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम पतई खालसा नई बस्ती ज़िला अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया अलीशा, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोज़ी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलीस डिकेस्ट्रो। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। ऊपरकोट बुलंदशहर के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार। बड़ा बाम्बू सुपाईसाई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती और इनके बहुत सारे साथी। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हंगोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और समस्त हंगोड़े परिवार। गाड़गीनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। इंदिरा विहार दिल्ली से हमारे सुनने वाले हैं बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी। इन्हीं के साथ राजकोट गुजरात से अजीत कुटरिया और गौरैया चौक अम्बाला से संदीप और राकेश के साथ बक्सर से राज एस डी वली अंसारी। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, सचिन, सतीश और योगेश। पद्म टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। आप सभी के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया गीत फिल्म एक नजर से।

एक नज़र फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ज़िला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान, आरिज रज़ा खान, फ़ायज़ा नाज और नाजिया खान। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल और भानु प्रकाश। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामनी। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा के हमारे श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी लोग।

कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और सायशा सोनवने। श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और इनके परिवार के सभी लोगों के साथ सुरेखा जोंदले। चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से सक्षम ज्योति, लता और इनके परिवार के सभी लोग। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति के साथ। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देवकुमार और आर्य कुमार जायसवाल। और मोताला महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर। आप सभी के लिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म है जोशीला।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लोफर फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसी आवाज को अब सुनते हैं येसुदास के साथ फिल्म त्रिशूल के गीत में। ये दोनों ही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, गांव जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, इन्हीं के साथ चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता किराना और केशव रिधान खुराना, मौला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पालीपुरी, सुनील पाठक और विनोदपुरी, पुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार के साथ, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी टिवांशी और इनके परिवार के सभी लोग, शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंद्राताई और छकुलीताई, खांडवी बुलढाणा से दीपावली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े, इन्हीं के साथ थिलोरी अमरावती के हमारे श्रोता हैं सुनैना पवन और तनुज पवन, लगार पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी और हर्षिता देशमुख, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, राहीनगर गंज डुंडवारा के हमारे सुनने वाले हैं शमसुल खान, शाहीन खान, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, ताबिश और आबाद खान, जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत और धर्मजीत, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और इन्हीं के साथ मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, और जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और समस्त संघई परिवार। आप सभी के लिए येसुदास और लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म त्रिशूल से।

पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु के हमारे श्रोता हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति पौरुष और इन्हीं के साथ रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और शर्मा परिवार के सभी लोग, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त, मोहल्ला मजार चांदशाम मियां रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई, इन्हीं के साथ बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शाइना काजल और भाई शहजाद अली, मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर के हमारे सुनने वाले हैं भाई रफ साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, किवले गांव पुणे से अंकिता कांबले, विजय कांबले और इनके परिवार के सभी लोग, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, और राजकोट गुजरात के हमारे श्रोता हैं रश्मि, झरना और भरत कुमार। आप सभी के लिए लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में गीत फिल्म वारिस से।

प्रोग्राम गीत आपके नाम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म दूसरा आदमी से। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, एटा रोड गंजडंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख और डी एच बच्चन, गंजडंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु बड़जात्या, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब के हमारे सुनने वाले हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के, ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर के हमारे श्रोता हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश, एयरपोर्ट रोड वंदानगर इंदौर मध्य प्रदेश से गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और नारायण खर्चे, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन के साथ भाई दिग्दर्शन जी, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली, और मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी के साथ वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, तथा करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान।

चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल, संजीव, बंटी और समस्त खुशदिल परिवार, मल्ला झंडा रामपुर से मोहम्मद असलम मंसूरी, फूल भाई और नसरीन जहां, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से हमारे सुनने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ग्राम जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल। दतरिंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और इनके साथ हैं रुद्र वर्मा। गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। पिपरिया के हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाणा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और इन्हीं के साथ सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके। अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। नूरमहल महसोल सीतामढ़ी बिहार के हमारे श्रोता हैं मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहां, रिफत जहां, नुसरत जहां, शाजिया शाहीनाज और नाजिया नूरीनाज। और सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। आप सभी के लिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म हीरा पन्ना से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म हीरा पन्ना के इसी गीत के साथ आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की अपर्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

0: पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दिन में 1:15 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा धरती गाती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शशिलता के गाए कुछ लोकगीत। ग्रामीण बहनों के लिए उनका कार्यक्रम होगा आंचल दिन में 1:30 पर। 2:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ, जिसका अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम शाम 5:45 पर। इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी शाम 6:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: पानी
1: कहाँ से लाऊं? पानी
0: पानी
1: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
0: पानी
1: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
0: पानी, पानी।
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: धरती गाती है कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं शशिलता को।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

धरती गाती है कार्यक्रम में आज आपने शशि लता के गाए कुछ लोकगीत सुने। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों के लिए उनका कार्यक्रम आंचल।

आंचल कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को सुनन बारी हमारी सभी बहनन को आपकी बहन सुमन की प्यार भरी नमस्कार और राम राम। कैसी हो बहनों? हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होई, मस्त होई और अपनों कामों अच्छे से कर रही होई। बहनों, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि सब ठीक ठाक रहें। बहनों, हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और पूजा पाठ करे जाते हैं, तो हम आज ऐसे ही एक व्रत की चर्चा करेंगे। बहनों, आप सबको तो पता हुई कि आज निर्जला एकादशी है। हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष महत्व माना जाता है। बहनों, वैसे तो साल भर में आने वाली एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। ये जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। बहनों, निर्जला एकादशी को व्रत बिना जल के रखो जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हुए जल तक ग्रहण ना करता है और पूरे दिन उपवास रखता है। बहनों, मान्यता है कि जो व्यक्ति सभी साल में आने वाले एकादशियों को व्रत ना कर पाता है, तो वे अगर श्रद्धा से निर्जला एकादशी को व्रत करें तो उनको सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बहनों, इस निर्जला एकादशी की एक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम को बहुत अधिक भूख लगती और वे नियमित रूप से एकादशी को व्रत ना रख पाते। तब वेदव्यास जी ने उन्हें वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी को व्रत रखने की सलाह दी। तब भीम ने ये व्रत रखो और उन्हें सभी एकादशियों के व्रत को फल प्राप्त हो। इसलिए बहनों, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहो जाता है। बहनों, निर्जला एकादशी को बहुत बड़ो महत्व है। जैसे जब व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति और आत्मिक बल मिलता है। व्रत के कारण पापों को नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है और बहनों, जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता आती है। व्रत में दान पुण्य को विशेष महत्व मानो गया है। बहनों, व्रत है के कुछ नियम होते हैं, हमें उन्हीं नियमों के अनुसार व्रत को संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले बहनों, सुबह ही स्नान करके साफ सुथरे कपड़ा पहन के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। उनको फल फूल तुलसी जल अर्पित करें और बहनों, दिन भर भगवान को स्मरण करें और संग में भजन कीर्तन भी करते रहें। बहनों, जरूरतमंद लोगों को दान दें। अगले दिन जल, घड़ा, छाता, पंखा, फल तथा अन्न को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे भी बहनों, गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी एक बड़ो पुण्य को काम मानो गो है। बहनों, ये व्रत केवल भूखे प्यासे रहने को नाम ना है, बल्कि आत्मसंयम अनुसार

0: और सेवा भावना को संदेश देता है। भानु, ये हमें सिखाता है कि जीवन में इच्छाओं पर नियंत्रण रखनो और दूसरों की सहायता करनो कितनो महत्वपूर्ण है। बहनों, व्रत हो या कोई तीज त्यौहार, इन सब में हम महिलाओं की अलग भूमिका होती है। घर की महिलाएं ही परिवार को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़न में मदद करती हैं। उनकी जहाँ में अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम बहनें ही अपने घर के छोटे बच्चों को व्रत, पूजा, दान और सेवा के महत्व के बारे में सिखा के उनमें अच्छे संस्कार डालती हैं, जिससे बहनों नई पीढ़ी अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ी रहे। बहनों, निर्जला एकादशी श्रद्धा, भक्ति, संयम और सेवा को पर्व है। ये हमें भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ मानव सेवा को भी संदेश देती है। हमें इस अवसर पर ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। और वैसों बहनों, अभी तो वैसों बहुत ज़्यादा गर्मी ही रही है, तो कोई सो जीव हो, हमें उसको पानी भी पिलाना चाहिए। इसलिए बहनों, अपने दरवाजे पर कोई बड़ी बाल्टी या टब में पानी भर कर रख दो, जिससे कोई पशु या पक्षी आके उस पानी को पी सके और अपनी प्यास बुझा सके। वैसे भी बहनों, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। जब वे धार्मिक और सकारात्मक वातावरण बनाती हैं तो पूरा परिवार उनसे प्रभावित होता है। और बहनों, आज को आधुनिक जीवन बहुत व्यस्त ही हुआ है, तनाव, चिंता और भागदौड़ बढ़ गई है। ऐसे समय में एकादशी व्रत हमें कुछ समय ईश्वर और स्वयं के लिए निकालने की प्रेरणा देता है। बहनों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में भौतिक सुखों के संग आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। बहनों, अब सुन लेते हैं यह परिचर्चा, जिसको विषय है स्वरोजगार से जुड़ी महिलाएं, और इसमें हैं ज्ञानवती श्रीमती मुन्नी देवी और श्रीमती रूपा देवी, और इसके संचालन है श्रीमती मीना। तो सुनते हैं जा परिचर्चा।
1: आज हमारे साथ हैं स्वरोजगार से जुड़ी महिलाएं ज्ञानवती, रूपा देवी और मुन्नी देवी। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ज्ञानवती से, तो ज्ञानवती आप क्या करती हैं?
2: मैं घर पर ही रहती हूँ। घर पर रहता है, घर को काम धाम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा है, खाना बनाना है, बालकन को स्कूल भेजते हैं, फिर जैसे काम धाम निपटा कर तो कढ़ाई कर लेते हैं हम।
1: काई कढ़ाई करती है?
2: कढ़ाई जैसे सूट है, रुपट्टा है, इनकी कढ़ाई करते हैं।
1: कढ़ाई को क्या बोलते हैं?
2: कारचोबी की कढ़ाई बोलते हैं।
1: तो कारचोबी की कढ़ाई जैसे रुपट्टा काटती है तो उस पर सुई से काटती है या चिपकाने वाला काम है?
2: सुई का भी होता है और चिपकान को होता है, दोनों काम होता है।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: तो जैसे एक रुपट्टा कितने दिन में निकाल देती है?
2: एक रुपट्टा जो तो जैसे कम पैसन के होता तो जल्दी हो जाता है, ज़्यादा पैसन के होता तो जैसे एक दो दिन लग जाते हैं। कम कढ़ाई होती है जैसे तो जल्दी हो जाता है, और ज़्यादा कढ़ाई होती है तो टाइम लगता है, जैसे एक दिन दो दिन लग जाते हैं।
1: तो कुछ है ना, जैसे साड़ी यू काटती है तो आप साड़ी ना काटती हो?
2: साड़ी में ज़्यादा औसत कम आती है, रुपट्टन में सूटन में ज़्यादा औसत आती है।
1: अच्छा। कभी कभी साड़ी भी काटते हो तो साड़ी कई दिन निकाल देती है?
2: साड़ी जैसे 500 की साड़ी है तो जैसे 500 की साड़ी में तो 3-4 दिन लग जाते हैं, और जैसे हम रुपट्टा काटते हैं तो 500 का रुपट्टा तो हमारा 2-1.5 दिन में हो जाता है।
1: अच्छा। तो ऐसे साड़ी ना लेती है, रुपट्टा लेती है?
2: हाँ, रुपट्टा और सूट लेते हैं।
1: अच्छा।
2: अब वो सूट होता है जैसे छोटे अड्डन पर टक जाता है तो वो क्या कहते हैं ज़्यादा बीच में भी ना फैलता है, और साड़ी कई बार टाँकनी पड़ती है।
1: अच्छा। तो टाँकन में समय बर्बाद होता
2: है? हाँ, बहुत समय बर्बाद होता है टाँकन में।
1: अच्छा। इसलिए रुपट्टा लेती हो?
2: हाँ।
1: तो जैसे आप रुपट्टा और साड़ी वगैरह सूट वगैरह कहाँ से लेती हो?
2: हमारे गांव में जैसे कड़वाते हैं जैसे उनसे कह देते हैं तो बेघर पर पहुँचाया जाता है।
1: कहाँ से आता है?
2: वे बाहर से लेकर आता है, बरेली से माल लेकर आता है, जैसे बरेली से आता है उनको माल। अच्छा। और बे जैसे पंजाब से आता माल तो बे जैसे बुलाते हैं तो गाड़ी आती है पंजाब से, तो वे कहीं बरेली से उठा लेते हैं, कभी मिलक से उठा लेते हैं।
1: रूपा जी, आप क्या करती हैं?
3: हमारी दुकान है पास में, तो हम सिलाई करते हैं।
1: सिलाई की सिलाई करती हैं?
3: सिलाई पेटीकोट है, ब्लाउज है, सूट सलवार है, यही सिलाई है, और ब्लाउज भी बनाते हैं।
1: आप कह रही हो सूट सलवार, तो सूट सलवार के आप कितने पैसा लेती हो?
3: जैसे ग्राहक देखते हैं कि पैसा वार हुआ तो उससे थोड़े सही पैसा ले लेते हैं, वैसे परेशान इंसान को उससे कम भी ले लेते हैं, 150 भी ले लेते हैं।
1: लेकिन सिलाई जात कितनी है?
3: सिलाई वैसे तो 250-150 से ऊपर ही जाती है, 200 तो जाती है। सीखने वाले भी हमारे घर आते हैं, जैसे लेडीज सीखने को कहती हैं तो हम सिखाते भी हैं उनके लिए सिलाई, और काम भी ले जाती हैं घर घर से, मतलब कहती हैं कि हम तुम्हारे घर ज़्यादा काम है तो तुम हमें काम दे दो,
4: सूट सलवार दे दो
3: सिलाई, हाँ सूट सलवार भी ले जाती हैं सिलाई के लिए, तो कहती हैं हम घर जा कर सिल लेंगे, तो हम सोचते हैं ज़्यादा है वो काम तो दे दे रहे हैं इनके लिए, वो देना जरूरी है अब, तो जे ले जाती हैं तो सिल लेती हैं अपने घर ले जा कर।
4: अच्छा, बस सिलाई भी सीखती हैं?
3: हाँ, और अपने घर भी कटवा के ले जाती हैं तो घर अपने सिल लेती हैं, कारीगरी के तरीका से पैसा दे देते हैं, कटिंग के पैसा हम रखते हैं और वैसे काम करती हैं भाई साहब के पैसा देते हैं।
4: अच्छा,
3: हाँ तुरपाई भी करने वाली, तुरपाई करने को भी ले जाती, तुरपाई तो देखो पैंटन में जैसे सब चीजन में होती है, ब्लाउज में हुक बटन लगाने वाली आती हैं, वे भी कहती हैं हमें हुक लगानता ही दे दो, साड़ी होती हैं उनमें फॉल उल लगानता ही दे जाती हैं तो वे फॉल भी हम लगा, सिलाई को अच्छा खासा काम चलता है।
4: कितने दिन में सिखाई देती हूँ?
3: 3 महीना को टाइम देते हैं, कोई कोई तो जैसे सही दिमाग की होती है तो वे सीख जाती हैं 3 महीनों में, और वैसे ज़्यादा दिन भी लगा लेती हैं।
4: तुम सिलाई सिखाती हो, सिखाने के कितने पैसे लेती हैं?
3: 500 रुपये लेते हैं
4: पूरे कोर्स के या एक महीना?
3: एक महीना के, सब दिमाग की बात है, जैसे मतलब तेज दिमाग से सीखाई तो अपने सही टाइम से निबट जाती हैं, सीख जाती हैं, 3 महीना में सीख के चली जाती हैं।
4: अच्छा, जेंसन के कपड़ा भी सिलती हो?
3: हाँ, जेंस के मतलब हमारे घर वाले सिलतेंगे, हम ना सिलते, जेंस वाले काम वे ही करते हैं, हमारे घर वाले हाथ बटा देते हैं, हम जैसे कोई काम करन को होता है तो करवाते हैं, वे तो कर देते हैं, तुरपाई उरपाई हम कर देते हैं, काज बटन भी हम ही कर देते हैं, हम सोचते हैं काज बटन और किसी से करवाएंगे तो सही ना करके दे ही, तो हम ही कर देते हैं तुरपाई, जैसे पैंटन में होती है तो जेंट्स लोगों की वाले पसंद ना आती है तो इसलिए हम खुद कर देते हैं। अच्छा। हम कह देते हैं सही तुरपाई हम ही करके देंगे।
4: मुन्नी जी आपसे जानना चाहेंगे आप क्या करती हैं?
5: घर में डंगर पालते हैं, 3 डंगर हैं, 2 भैंस है और एक गाय है, दूध दे रही हैं, उनके अपने साफ सफाई करते रहते हैं।
4: आपकी उम्र कितनी है?
5: 60 साल उम्र है।
4: तो 60 साल में आप जानवर पाल रही हैं और साफ सफाई करती हैं, तो आप सब काम कर लेती हैं?
5: घर का काम कर लेते हैं, खेत का काम नहीं होता, घास तो हमारा लड़का लाता है, बहू लाती है।
4: अच्छा।
5: हाँ, जानवर बहू काट के डाल देती है घास उस, और हम घर में डंगर खवाते रहते हैं, दूध दूध काट लेते हैं, हम ही दूध। अच्छा। लेते हैं।
4: जानवर की साफ सफाई कैसे करती हो?
5: झाड़ू बाड़ू लगा कर गोबर को डाल देते हैं, सफाई कर देते हैं, गोबर उबर इकट्ठा कर देते हैं, डंगर ना काटा है, और गोबर सुबह झाड़ बहाड़ करके और गोबर भर कर दे देते हैं, हमारे लड़का डाल जाता है, सब सफाई करके फिर नहाते हैं डंगन को, नहा कर फिर दूध देते हैं, दूध देकर आउटन धर देते हैं।
4: आप कह रही हैं कि दूध आउटन रखते हैं, अब तो बेचते ना है, सब लोग तो बेचते हैं
5: ना? हम घी बेचते हैं, हमारे दूध में औसत ना आती है।
4: अच्छा।
5: हाँ, घी बेचते
4: हैं। घी कैसे बनाती हैं?
5: घी उसे हरिया में औट कर और उसका मठा चटा कर,
4: तो औट तो कहाँ पर होगी?
5: भरोसी में औटते हैं, हरिया में कंडा जला कर।
4: मठा का चलाती है बिजली वाली मशीन से चलाती है? हाथ से?
5: बत्ती वाली से चलाते हैं, बिजली वाली से।
4: अच्छा, आप तो पुराने जमाने की होगी, पहले तो हाथ से ही चलाते, हाथ से ना चलाती हैं तुम?
5: अब हाथ से कहाँ चलाता, पहले वाली वो रही कहाँ रही, रही नहीं बत्ती से ही चलाते।
4: तो तुम्हारी तो होएगी, और कहोगे घर तो ना हो, तुम तो पुराने जमाने की हो।
5: दूध है ज्यादा।
4: अच्छा।
5: 3 डगन को दूध है तो कहीं चल जाए हाथ से, भाई से चलते बत्ती वाली रही से।
4: अच्छा, मशीन लगा दी, अपने काम कर रहे हैं?
5: काम कर रहा है मठा, चल रहा हूँ, न बत्ती पहले न बत्ती वाली रही।
4: हाँ।
5: अब तो नए नए मॉडल की सब चीज चल रही है, मजबूरी को चलाते हाथ से।
4: अच्छा,
5: जब आप सब चीज है तो क्यों चलावा हाथ से?
4: अच्छा, तो तुम नई बहुन के तरह आलसी बन रही हो?
5: और जब नई नई बहुन को आलस है तो अपनी क्यों ना हुए?
4: पहले जमाने में सब दूध औटाते और दूध जैसे मेहमान को देते तो लाल हो तो, और मलाई डाल कर लाल दूध देती है पियन के ला। अब जहाँ कहीं रिश्तेदारी में जाता तो दूध लाल ना होता, तो आप लाल करके उठाती हो कैसे उठाती हो?
5: भरोसी में लाल करके उठाता है।
4: लाल कैसे होता था?
5: भरोसी में कंडा सुलगाते दो दो बार।
4: आजकल की बहुएं आलसी हैं तो एक बार सुलगा दो।
5: अबे सुलगा दी ना, तो अपने गैस पर खौलाओ और अपने धर दो, उन्हें कंडे की जरूरत है।
4: इसी लिए वो घी अच्छो ना होता है। हाँ। ना स्वाद लगता,
5: मठा स्वाद लगे, ना दही स्वाद लगे, ना दूध स्वाद लगे। हरिया की दूध की बात निराली,
4: पहले तो हरिया चलती मट्टी की, हरिया में दूध औटात हो तो बाकी मलाई भी खात हो,
5: सीपा भर भर के खुर्चन निकलती।
4: अच्छा, सीपा कैसे कहता?
5: सीपा होता हमारे टीन के बने में।
4: अच्छा।
5: हाँ, उन्हीं से खुर्ची जाती है हरिया, जब जब सीपा चल पड़े फिर सीपा से करी, पहले सिपिन से करते।
4: सीपी कैसी?
5: सीपी जो नदी में होती है, घोंग वाली नदी में ढूंढ के लाते, पहले जाते है फिर लेन जाते।
4: तो मट्टी की हड़िया में दूध औटाती है या पतीली में?
5: ना मट्टी की हड़िया है हमारी।
4: अब तो सब घर में पतीली में औटाती है, तुम पुराने जमाने की हो तो पहले ही की तरह काम कर रही हो।
5: और हमारी तो हड़िया है पहले ही की, पतीली का कहते पतीली को दूध होता है।
4: घी तुम्हारा का भाव बिकता है?
5: 1200 रुपए किलो बिक जाता।
4: हमने घी लाओ तो घी में धुआं की माह आ रही और बामा दाने भी परे बनाए और सफेद सफेद घी दिखा रहा हो, तो बामा का कमी ही?
5: बामा जो कमी ही उनने धुआं में दूध औटन धर दो और खरो कर का औटाओ ना हो तब माँक नया ही बामा, जब खरो कर खूब औट जातो तमाम दानों भी पड़ते और माँक भी आती खूब।
4: तो घी ऐसे अगर हम औटाएंगे तो घी में पता कैसे चला ही? अब घी बनकर तैयार होगा
5: वो पटर पटर होता है, चटकता है वो मैयर उसको।
4: अच्छा,
5: जब मैयर चटकता है तो घी समझ लो हेगो गर्म, तुम बाद दोबारा गर्म कर लियो सही जाए।
4: तो आप अपने जानवर को खवात का होगी?
5: कुटी खवाता है और चोकर वगैरह है, दलिया है, दलिया अपने रांध के दलिया खवाता भैंसन को।
4: हरे चारा में का खवाती?
5: हरे चारा में घास है, घास ले आती है हमारी बहू, ले आती है लौड़े ले आता है।
4: लड्डू बना खवाते हुए दूध के ला तो बे कैसे बनाया जाता?
5: बे अलसी कूटो, सतावर कूटो और मिठाई कूटो, जीरो सब चीजें को कूट काट कर और बाकी लड्डू बना के धर दो, लड्डू बना धर दो और डगन के दे दे तुम, जैसे दूध भी बढ़ जाता है और घी भी सही होता है, डगन में भी ताकत आती है, सब बात में सही है वो तो, घी में दूध में और डंगर भी सही रहता है वैसे।
4: ज्ञानवती आप कारचोबी यानी कढ़ाई के अलावा और क्या काम करती हो?
2: एक भैंस पालता हूँ।
4: अच्छा, हाँ। तो बच्चन की देखभाल करती है और कढ़ाई भी करती है, तो कैसे समय निकाल लेती है भैंस को देखभाल करने में?
2: जा सुबह को सिवरते उठ जाता है, फिर क्या कहता है अपनों घर को काम निपटा लेता है, बच्चन को स्कूल भेज देता है, उसके बाद जैसे बे सुबह में चारा उरा ले आता है खेत पैसे खांद का डाल देता है, फिर हम अकेले रह जाते हैं तो नांद जैसे चारा मिला कर और नांद कर देता है, वो खाता रहती है, फिर अपनी कढ़ाई करता रहता है।
4: चारा में काका चारा खवाती हो?
2: अब तो जय चारा चल रहा हो जैसे भूसा है, चोकर उकर कट्टा मंगा लेता है चोकर को और थोड़ी सी खल उल और यही दरिया पिसवा लेता है, तो जाके नांद कर देता है, एक सुबह में कर देता है, दोपहर में कर देता है और अपने 4 बजे के टाइम कर देता है।
4: और उनकी साफ सफाई कैसे करती हो?
2: साफ सफाई जाए जब गोबर करता तो तुरंत ही बचा देता गोबर, जैसे कि वो काटा ना काट देती है तो सब में गोबर हो जाता है, पेशाब साफ करती है तो वो जैसे थोड़ो नीचे कर दो तो गड्ढा में इकट्ठी जाती है, वो हम भर का डाल देते हैं, तो गंदकाई होता ना थोड़ी बहुत होती है तो हम झाड़ू से साफ कर देते हैं। और हमारे तो भैंसिया जो समझो वो नीचे चटाई बिछा देते हैं, चटाई पर रहती है, फिर मार देता है पाइप से पानी मारो और साफ हो जाती है।
4: अच्छा, हाँ। तो वहाँ में ज्यादा गंदकाई होता है?
2: ज्यादा गंदकाई होता ना है।
4: डंगन के भी किलनी पड़ जाती है तो किलनी के लिए क्या करती हो?
2: किलनी पड़ जाती है पहली बात तो जैसे डंगन की साफ सफाई रखो तो किलनी होता ना है, हमारे डंगन के तो होता ना है, और जैसे हुई जाती है तो हम नीवन को पानी खोला है बस नहा देते हैं, 2-3 बार नहा दो तो वे खत्म हो जाती है, सुबह शाम वो पानी चिपड़ देते हैं डंगन के तभी सब खत्म हो जाती होंगी।
4: सबसे मेन बात है कि साफ सफाई रखो, साफ सफाई रखोगी तो किलनी पड़ेंगी है ना?
2: किलनी पड़ेंगी है ना।
4: और जैसे मच्छर उच्छन के लगा करती हो?
2: मच्छरन के लिए धुआं सुलगा देता है संजा को, 2-3 कंडा सुलगा देता है, जो सुलगे कंडा सुबह तक से जलता रहता है तो मच्छर आता ना है।
4: मच्छर के लिए मच्छरदानियाँ तो चल रही है?
2: मच्छरदानियाँ चल रही है, मच्छरदानियाँ जैसे एक आध बार हमने लगाई है तो फाड़ देती है, सब भाई को चक्कर काटती है तो वहां फाड़ दी है, तो हम ऐसे ही करते हैं जैसे मच्छरदानी ना लगा के धुआं से लगा देता और पंखा लगा देता है, पंखा अच्छा। चलता रहता है।
4: तुम्हारी भैंसिया दूध दे रही है?
2: हाँ दूध दे रही है हमारी भैंसिया।
4: तो दूध से तुम क्या करती हो?
2: दूध तो जब 5-6 लीटर दूध देती है तो हम एक टाइम को तो जैसे बेच देते हैं, घर को खर्चा उड़चा के जैसे बाकी चोकर वगैरह आ जाता है टाइम को रोक लेता हम खान के लिए, जैसे दूध मठा घी हम भी खा सका और हमारे बालक को खा सका।
4: और मुन्नी देवी जी कह रही थी कि हम घी बेचते तो तुम दूध बेचते क्यों, घी बना क्यों ना बेचती हो?
2: हमारे टाइम ना है वो, तो दूध का ऑर्डर रखा है फिर मठा चलावा है फिर उसे तावा है तो हमें थोड़ा दूध बेच ही देते हैं और जैसे अपने खर्चा के लिए रोकते हैं जैसे अपने ही लगी।
4: अच्छा, तुम्हारे पास समय ना
2: समय ना है हमें अच्छा। तो कि हम मठा चलावा और काम कर सके।
4: अच्छा। रूपा जी, मुन्नी देवी जी और ज्ञानवती हमारे कार्यक्रम में आई, आप तीनों का धन्यवाद।
0: बहनों अभी आपने सुनी जा परिचर्चा जिसको विषय हो स्वरोजगार से जुड़ी महिलाएं। इसमें प्रतिभागी थी श्रीमती ज्ञानवती, श्रीमती मुन्नी देवी और श्रीमती रूपा देवी। इसको संचालन करो हमारी बहन मीना ने। हमें उम्मीद है आपको इससे कुछ सीख जरूर मिली हुई। बहनों बातें तो आप बहनों ने बहुत सुन ली, अब कर लेते हैं थोड़े खाने पीने की बात है। बहनों गर्मी आते ही हमारे घरन में दही की खपत बढ़ जाती है, और हो भी क्यों ना, आखिर दही गर्म मौसम में शरीर को भीतर से ठंडो जो रखता है। बहनों दही अगर आपको भी पसंद है तो आप भी दही को कई तरह से उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाती होंगी। आज हम आपको बताएंगे दही से बनाने वाली कुछ चीज़ों के बारे में। उसी में से एक है दही से बनाई हुई ठंडी लस्सी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी दही की, और साथ में ठंडे पानी, दूध और थोड़ी सी चीनी, और थोड़े बर्फ़ के टुकड़ा, और हाँ बहनों इलायची पाउडर की भी। बहनों दही को एक बर्तन में निकाल के उसमें चीनी और पानी दूध को मिक्स करके उसमें थोड़ी देर जो छोटी वाली रई आती है उससे चला लें। अब बर्फ़ और इलायची पाउडर डालकर फिर से थोड़ा फेंट लें और तैयार है दही से बनी हुई ठंडी ठंडी लस्सी। बहनों इसमें और कुछ नए स्वाद के लिए आप लस्सी में पुदीना और थोड़ा भुना जीरा भी डाल सकती हैं, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। बहनों गर्मियों में लस्सी शरीर को ठंडक देने और तरोताज़ा रखने के लिए बहुत काम में आती है, और पीने के लिए भी बहुत बढ़िया है। और बहनों हम दही को रायता भी कई प्रकार से बनाते हैं, उसी में से एक है जैसे दही और बूंदी को रायता। इसको भी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें अपने घर की थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठी करनी हुई, जैसे कि दही, नमक, भुना जीरा और थोड़ी सी मिर्चें और बूंदी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बहनों बूंदी को 2-3 मिनट पानी में भिगोकर रख दें, और बाद में उसको निकाल के निचोड़ लें, और दही को अच्छी तरह से चला के उसमें बूंदी और मसाले डाल दें। बस बन जाए दही और बूंदी को रायता। बहनों मिक्स वेज रायता भी बहुत अच्छा लगता है। बाकेला बनाने के लिए दही में बारीक कटो खीरा, टमाटर, प्याज और हरा धनिया मिला के स्वादिष्ट रायता बन जाता है। और साथ में बहनों दही में पुदीना, भुना जीरा और काला नमक मिलाकर ठंडा ठंडा पानी पियो तो बाको तो स्वाद ही अलग होता है, और उससे ताजगी भी अच्छी मिलती है। बहनों गर्मियों में रायता पाचन में मदद करता है और शरीर को ठंडक देता है। इन रायतों को आप पराठे, पुलाव, खिचड़ी या रोज के भोजन के साथ खा सकती हैं। बहनों अब तो वैसे हूँ गाँव के खेतन में धान की पौध लगाई जा रही है, और हमारे घर के बालक और जो काम करने वाले लोग हैं जब भी दोपहर में लौटकर आते हैं तो आप उनको ये सब चीज़ें बनाकर पिला सकती हो, जिससे उनको शरीर भी भीतर से ठंडक रहे और उनको भी आराम मिले। बहनों अब कर लेते हैं मनोरंजन और सुन लेते हैं जो लोकगीत। इसके बोल हैं श्याम तोरी बंसी बजे धीरे धीरे।

बहनों, अभी आपने सुनो जो लोकगीत। हम आशा करते हैं आपको जी पसंद आओ हुए। बहनों, अभी बहुत तेज तपती गर्मी पड़ रही है, तो आप अपनों और अपने बालकन को ध्यान अच्छे से रखो। और हाँ बहनों, जिन बहनन के घर में भैंसियाँ या बकरियाँ पलती हैं, तो वे उनको ध्यान खास तौर से अच्छे से रखो, जिससे उनको जब गर्मी में कोई परेशानी ना हो। उनको दोपहर में कोई पेड़ की छांव में बांधें, और पानी को तो विशेष ध्यान रखें, जिससे वे भी आराम से रह सकें। और बहनों, आपको हमारो आंचल कार्यक्रम कैसो लगता है जे हमें ज़रूर बताया करो। जे बताने के लिए आप हमें ईमेल या पत्र भी लिख सकती हूँ। हमारा पता है आंचल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन नंबर है 244901। अब अपनी बहन सुमन को दीजिए अनुमति। राम राम।

0: अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी कार्यक्रम आंचल।
1: पानी पानी
2: कहाँ से लाऊं पानी?
1: पानी
2: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
1: पानी
2: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
1: पानी
3: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: तत्काल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित

0: करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढही, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

0: सत श्री अकाल, स्वागत सभी सुनने वाले श्रोताओं।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशा इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा, तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
4: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
3: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
4: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
0: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
4: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
3: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधु कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
4: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
4: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
4: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
4: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिनपे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
4: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
4: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
4: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
4: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
4: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
4: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
4: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
4: अच्छा
7: जी,
4: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
4: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
4: गिजू भाई के अनुसार,
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
4: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
3: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: NCERT उमंग। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। मीडियम वेव और FM पर अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। दूसरी सभा में शाम 4 बजे इन्हीं मीटरों पर आपसे पुनः भेंट होगी। लेकिन अब से शाम 4 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें यह सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन, ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज़ से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी, ग्रामीणों को जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे, और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रहीं और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रहीं।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसा आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया, और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार

0: अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव का छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड
1: जी
0: रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही
1: हाँ।
0: हैं, फलानी चाची आ रही हैं,
1: और
0: फलानी जगह
1: कोई
0: की
1: मत वाला
0: भाभी
1: आया
0: आ,
1: मेरे द्वारे ही तो होता है
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी,
1: हाँ
0: पुरवा वाली भाभी, और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे
1: हाँ
0: जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली
0: लग,
1: चाची,
0: हाँ।
1: आगरा वाले
0: और
1: ताऊ
0: कई बार
1: जी
0: तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही हैं, देखिए
1: हाँ
0: ना, राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग हो

0: है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा
1: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना
0: जी
1: बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी
0: जी
1: टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी
0: हाँ
1: वाली चाची, कौन सी वाली बुआ। तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे
0: जी
1: विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में
0: अगर
1: शादी है
0: कोई
1: तो।
0: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
0: जी
1: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल सही बात है
1: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं,
0: बिल्कुल बहुत
1: उसकी
0: सारी
1: बात अलग
0: छेड़छाड़
1: होती है।
0: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो गए हो।
1: गया, बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है, और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
1: ज्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये भी
0: हाँ
1: होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक
0: जी
1: गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
5: अभी इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
2: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
5: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें, पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
2: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने की, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
5: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष श्रोता शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
2: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गई और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुड़ते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं।
5: हाँ।
2: कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
5: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
2: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
5: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है,
2: अमूमन ऐसा होता है।
5: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले
2: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल
1: क्या बात है
0: रिश्तों
1: भाई।
0: को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूं, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा, चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है।
0: जी,
1: अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे, आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
0: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स से जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंगस्ट 3 सन्स ऑफ माय पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली एकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबॉडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लियर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन टा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा
0: पूरा, मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कंप्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा है, देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो कैसा था?
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको इसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते। अच्छा। रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर।
0: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी देयर आर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपाई VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2-3-4-2-1-0-8-5।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया।
1: जी,
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया?
1: जी, मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप, मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करने पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वाज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
0: पूरा लाइफस्टाइल।
1: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचर को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर, मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई हैड टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वाज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
0: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे थे, स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
0: तो एक बड़ी टीम हो गई,
1: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
0: बिल्कुल,
1: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वाज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
0: अच्छा।
1: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी, तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देकर आगे आगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है। तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
1: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
0: बस,
1: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
0: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए,
1: हमेशा
0: तो
1: के लिए।
0: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
1: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
0: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
1: बिल्कुल।

0: आप में एक अचीवमेंट था जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने
1: जी
0: उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस
1: सर, ये
0: अचीवमेंट।
1: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो
1: जी
0: अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
1: बिल्कुल
0: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
1: बिल्कुल
0: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, एक चीज यहां पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है
0: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में
1: ओके
0: हैं,
1: जी
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
1: ओके
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
1: जी
0: में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
1: ओके
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
1: जी
0: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है। पर
1: जी
0: यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
1: जी
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
1: डिसिप्लिन
0: भावना डाली जाती है,
1: बिल्कुल
0: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर
1: बिल्कुल
0: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है। हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो
1: जी
0: सकती हैं,
1: करियर को
0: चॉइस
1: लेकर
0: हो
1: के
0: सकती हैं,
1: जी
0: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: यानी
0: जाता
1: कि
0: है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
0: जी
1: मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज हो जाता
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो सर,
0: यस
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
1: ठीक है
0: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है
1: ठीक
0: जिसपे
1: है
0: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
0: जी,
1: प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या
1: या
0: जो
1: जो
0: पास आउट हो चुके हैं,
1: हो चुके हैं
0: हाँ
1: वो
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो
1: की
0: 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। जो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे के पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्डकोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमाटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है।
0: ओके।
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
0: ओके।
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा।
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं, जहां
0: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझेंगे, आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो बता रहे हैं आप
1: संस्थान में, जैसे कि टर्शरी केयर होता है जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है। अच्छा। कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
0: ओके।
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
0: सर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताया उनको और बेहतर।
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में एक तरीके से, जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
0: जी तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
1: फिर आगे बढ़ते हैं।
0: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
0: okay.
1: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, और उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था। और जाहिर है वो बहुत टफ भी रहा होगा।
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो उस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स हैं जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
1: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
0: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है
0: वो एक लाइफ और बहुत ही स्पेशल है,
1: समझता हूँ।
0: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझे और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो
1: जी।
0: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रांग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दशवार है, एग्जैक्टली।
0: सर एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहां आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
1: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
0: अच्छा,
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
0: अच्छा,
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं,
0: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
1: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड, दैट स्पिरिट
0: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है, वो उस पर जान निशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जिससे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
1: जी बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
0: तो आज आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक। आप भी एंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से। 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बनी चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड RJ सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart, myself, Shankar Lod, from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
1: Bharat Mata Ki Jai.
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से. तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में
1: जी.
0: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा.
1: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है. ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से
0: जी.
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है.
0: ओके.
1: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में
0: जी.
1: ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है. यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है. तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव जो दिख रहे हैं
0: जी.
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे या गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली exactly. उनकी हिल रही है बस खाली.
0: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे.
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है. तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है.
0: बिल्कुल.
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही. जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है.
0: सर, एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है
1: जी, जी.
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
1: जी.
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है. हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं.
0: किताबें,
1: देखिए साहब, आप
0: तो
1: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है. तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस, यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग. ये बहुत आवश्यक है,
0: ये बहुत जरूरी है. और सर, इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
1: देखिए, फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए.
0: अच्छा.
1: किस तरीके से दूर रहना है. देखिए, फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना, कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए. तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है. तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि
0: अच्छा.
1: भाई, कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना.
0: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट,
1: यस, अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है. आप बोल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई, कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से. प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है.
0: तो सर, ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है. तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए।
1: देखिए कुछ चीजें
0: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
1: जी, जैसा डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
0: जी। तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर जो लोगों ने हमसे बात की।
1: तो मच
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए
1: जी।
0: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं मेघा ठाकुर और भारती।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं भारती
1: और साथ हूँ मैं आपकी रेडियो साथी मेघा ठाकुर।
0: दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज के अपलोडेड पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए अपने अपने सही जवाब। और सही जवाब देने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के अंत में।
0: मेघा, आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने राजनीति में ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम वीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं।
1: बिल्कुल भारती, वीपी सिंह भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसने अपने फैसलों से देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी।
0: विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के राजघराने से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित किया।
1: शुरुआती शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी पहचान एक ईमानदार और निडर नेता के रूप में बनाई। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे।
0: जी हाँ, और बाद में वह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

0: मंत्री भी रहे।
1: जी हाँ, और बाद में वह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
0: और भारतीय यही कारण था कि उन्हें एक सख्त और ईमानदार नेता माना जाता था। लेकिन उनका
1: शिक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की थी। वीपी सिंह ने इन सिफारिशों को लागू किया, जिससे देश भर में बड़ी बहस और आंदोलन शुरू हुए।
0: और हाँ, कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ ने विरोध। लेकिन ये निर्णय भारतीय
1: कमजोर और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया।
0: और राजनीति के अलावा वे कला और साहित्य में भी रुचि रखते थे। वे कविता लिखते थे और सामाजिक मुद्दों पर गहराई से सोचते थे।
1: यही बात उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। वे केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की सोच रखते हैं।
0: और भारती 27 नवंबर 2008 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा लिए गए फैसले आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्यारी सी चर्चा के बाद अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं,

0: फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
0: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
5: कैलेंडर पर आज तारीख है 25 जून। आज का दिन इतिहास और वर्तमान दोनों ही लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि आज दो बड़े और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को याद करने का दिन है।
6: भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट के मुताबिक आज पूरा देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद कर रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं आज के दिन को यह नाम क्यों दिया गया और इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1975 में। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने पूरे देश में आपात

0: शीर्ष विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई समेत लाखों सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी वारंट के सलाखों के पीछे डाल दिया गया,
1: क्योंकि उस 21 महीने के काले दौर में हमारे संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को पूरी तरह कुचलने का प्रयास हुआ था। इसलिए सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया है।
0: इस दिन को मनाने का मकसद किसी भी तरह की राजनीति करना नहीं है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी को यह याद दिलाना है कि हमारी आज़ादी, हमारा संविधान कितना मुश्किलों से बचा है।
1: आज हम जो सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और आज़ादी से जीते हैं, ये सब हमें इसी संविधान की बदौलत मिला है।
0: आज का दिन उन सभी वीर सेनानियों को नमन करता है जिन्होंने जेल की यातनाएं सही, लाठियां खाई, लेकिन लोकतंत्र के इस सूरज को बुझने नहीं दिया।
1: कुछ खास है, आज को कंटिन्यू करते हैं एक और खास दिन के साथ। दोस्तों, जब सुबह उठकर हम अपने हाथ में स्मार्टफोन लेते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या बाजार से जरूरत का कोई भी सामान खरीदते हैं, तो क्या कभी बैकग्राउंड में चल रही उस विशाल दुनिया के बारे में सोचते हैं जो इन चीजों को हम तक पहुंचाती है?
0: शायद रोजमर्रा की भाग दौड़ में हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता, लेकिन दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और उनके बारे में सोचो जो महीनों तक अपने परिवार से दूर, अपने दोस्तों से दूर, सिर्फ नीले समंदर और खुले आसमान के बीच अपना जीवन गुजार देते हैं।
1: तो साथियों, आज है 25 जून यानी डे ऑफ सी फेयरर। आज का ये पूरा दिन समर्पित है मर्चेंट नेवी के उन सभी जाबाजों के नाम जो लहरों पर अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं।
0: दोस्तों, लाइफ सिर्फ शांत पानी देखने जैसी नहीं होती है। जब मौसम बिगड़ता है ना, और सामने 20-20 फीट ऊंची मास्टर लहरें जहाजों से टकराती हैं, तो अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है।
1: पर ये लोग पीछे नहीं हटते, अपनी जान हथेली पर रख कर कैप्टन से लेकर इंजन रूम के इंजीनियर तक

0: लिखाई से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
0: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स की ओर।

0: तो एक स्पोर्ट्स के रूप में अपना रही है, तो आप भी क्यों पीछे हैं? आज ही उठिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और अपने जीवन में संतुलन लेकर आइए।
1: दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव का। लेकिन आपको बता दें कि आज जून महीने का आखिरी गुरुवार है और इस दिन हम लाते हैं फरमाइशी गीतों का फेसबुक लाइव सेगमेंट। तो आप हमें फेसबुक के माध्यम से अपने फरमाइशी गीत लिख भेजिए हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर। और आज के स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव की पहले गीत की फरमाइश लिख भेजी है बनिया पार धमतीरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी सरस्वती मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शारदा कुमार डोडवानी।

तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के अगली फरमाइश की है गगनदीप थांदी ने, जिन और उन्हीं के साथ इस सॉन्ग की फरमाइश की है लाल मोहम्मद अंसारी जी, हरदेवी मिका, बलविंदर मिका, जयतेग वीरक, मिका वीरक, आकाश रस्तोगी। और फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर जी।

दोस्तों, अगले गीत की फरमाइश आशा जी की आवाज़ में और फिल्म मेरा साया से आप सभी श्रोताओं ने फरमाइश लिख भेजी है। फाजिल का पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लड़की खेरा, शालिनी खेरा, तिवांशी खेरा, वानी खेरा, आरवी खेरा। और इसी के साथ हमें फरमाइश भेजी है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी नरोरा छत्तीसगढ़ से, डिंपल, मीनाक्षी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। और हमें लिख भेजी है अगली फरमाइश भागवत चौबे लाडला जी ने, लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे। और हमें इसी गीत की फरमाइश भेजी है दिग्दर्शन गौण ने, मेरठ कैंस कविता गौण और दिग्दर्शन गौण। बलवंत कुमार वर्मा जी ने हमें इस गीत की फरमाइश भेजी है प्रमेला गंज अलॉट जिला रतमाल मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, रजुबाई वर्मा, अतुल वर्मा, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि पाल वर्मा। आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

हरिमणि वर्मा, पारसंबर सम्माणी वर्मा, पुष्पेंद्र माणी वर्मा, नोखेला लाल वर्मा, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान।

और साथ ही साथ इसी गीत की फरमाइश की है लाल मोहम्मद अंसारी जी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनीजर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और मुन्ना भाई। तो आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं हम आपको ये फिल्म का गीत राज, और फिल्म के गीत कलाकार हैं अलका याग्निक।

साथियों, हमें अगली गीत की फरमाइश लिख भेजी है प्रवीण चौहान, पीवी कुल थे, हनुमान कुल थे, प्रथमेश कुल थे और रेडियो पर सुनने वाले सभी श्रोता साथी। दिनेश वर्मा जी ने अगली फरमाइश इसी गाने की है, करुणा वर्मा, सखावत मंसूरी, मंसूरी क्लब ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से सखावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, तौफीक मंसूरी, लहीक मंसूरी, राहुल रस्तोगी, सुनील रस्तोगी, दर्पण सैनी और सारे दोस्त। हमें इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है पटेला पटेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। इसी गीत की हमें अगली फरमाइश भेजी है चक्करभाटा कैंप से डी आर नरवानी, रवि चांदनी, खुशी ने। और अगली कमेंट हमें भेजी है संतोष खट से और विनोद खट से, महाराष्ट्र यवतमाल विदर्भ से। नवी हसन अब्बासी जी के द्वारा हमें कमेंट प्राप्त हुई है। नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रईस रसीद बारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी। और हमें इसी गीत की कमेंट लिख भेजी है गुरमीत सिंह मीता, साउथ दिल्ली से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया से आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: साथियों, हमारे आज के फरमाइशी विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप हमें इसी तरह फेसबुक के माध्यम से अगले सेगमेंट में लिख भेज सकते हैं फरमाइशी गीत अपने। साथियों, अब वक्त है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का। चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब और साथ ही जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने दिए हैं सही जवाब। हमारा आज का सवाल था, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जिसका सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार। और इस सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: जॉन डी कैस्ट्रो, भाई रफत साहब, चौधरी राजवीर सिंह, उत्तम सिंह, मोरस जांघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जांघेल और नंदिनी जांघेल, नवी हसन अब्बासी, एमडी यासीन अंजान, प्रवीण चौहान, श्री कृष्ण बाठे, कमल बालूजा, संजय ढींगिया, सुदर्शन शाह, प्रखर शाह, पल्लवी शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, सुरेश जायसवाल, उत्तम कुमार भगत, प्रकाश, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, अजीत कसाना, राजू मिगलानी, किशन सपकाल, विजय सिंह मजुम, जगदीश धाकड़, हलके जयपाल यादव, बलवंत कुमार वर्मा, लाल मोहम्मद अंसारी, अल्ताफ होजारे, देवशंकर तामुरिया, विजय सुरलकर, सिद्धार्थ गोंडाने, राधेश्याम पांडे, लालगिरी गोस्वामी, श्यामसुल कुमार राही, अशोक सिंह, वलीउल्ला अंसारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मसरूर हसन, राजेश कुमार वर्मा, राष्ट्रपाल गजभिय, सोहन जोशी, शेख मूसा, निसार सलमानी, वीरूलाल बागतारिया धाकर, जाकिर मंसूरी, बीपी गौतम, भेरूलाल बागतारिया, भुवन प्रकाश, सुनील पाठक, मिसबा शमशी, गुरमीत सिंह मीता, मास्टर बिठल सुरोशे, राम कुमार रेवाड़, विनोद मूणत, मोहम्मद सईद अब्बासी, अरविंद कुमार, रवि रस्तोगी, सतेंद्र चंसौलिया पजौनिया, लाल बाबू दीवाना, नरेंद्र शर्मा, सुरेश गगनेजा, इरशाद अहमद अंसारी, धीरज भाई रावारी, गजनन येले दरियापुर भावली, कैलाश फूलमाली, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, शाहरुन नूर अंसारी, रवि कुमार राहुल, मुकेश कश्यप, रियासत हुसैन सिद्दीकी, भागवत चौबे लाडला जी, उमेश कुमार गौर, नितेश कुमार देवांगन, फरियाद हुसैन अंसारी, गगन सिंह रावत। तो साथियों, आप सभी ने दिए हैं हमें इस सवाल के सही जवाब।
0: दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय, एक नए साथी और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार और आसपास के जीव जंतु पर्यावरण का ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब अपनी रेडियो दोस्त मेघा ठाकुर
0: और भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। ये समय है किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुन बारे सब भैया बहनों को आपकी बहन दीपा
1: और अनिल भैया की
0: राम राम, राम। अनिल भैया, इन दिनों गांव देहात में खेतन की रौनक कुछ अलग है दिखाई दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं किसान भैया खरीफ की फसलन की तैयारी में जुटे हैं तो कहीं पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था में।
1: सही बात है,
0: पशुपालन और खेती एक दूसरे को पूरक मानते भैया।
1: बिल्कुल दीपा बहन, किसान भाई की खुशहाली में पशुपालन को बड़े महत्व है और पशु स्वस्थ रहेंगे तो दूध उत्पादन अच्छो होए और खेती के काम में भी सहायता मिल सकती है।
0: बिल्कुल अनिल भैया, पशु उनके अच्छे स्वास्थ्य की बात आती है ना तो हरे चारे को नाम सबसे पहले लो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज हम जय विषय पर चर्चा करेंगे कि पशुओं में हरे चारे को क्या महत्व है।
1: बिल्कुल दीपा बहन, और आपने सही बात कही, हरो चारो जो है बहुत ही जरूरी है हमारे पशुओं के लिए। प्राकृतिक और पौष्टिक आहार माने जाते हैं, इसमें प्रोटीन विटामिन खनिज तत्व और पर्याप्त नमी भी पाई जाती है जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है।
0: हाँ भैया, गांव के बुजुर्ग पशुपालक में पशुपालक ना हमेशा कहते आए हैं कि पशुओं को नियमित रूप से हरो चारो मिलता रहे ना तो वे अधिक स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे और हमें कोई दिक्कत ना होगी।
1: बिल्कुल दीपा बहन, हरो चारो पशुओं की पाचन को बेहतर बनाता है और उनको पाचन करने में भी मदद करता है, जिससे पशु चारे को उचित उपयोग कर पाते हैं और उनकी जो कार्य क्षमता भी वो है बनी रहती है।
0: बिल्कुल अनिल भैया, दूध देने वाले पशुओं के लिए हरे चारे को विशेष महत्व मानू गए है।
1: बिल्कुल दीपा बहन, और संतुलित मात्रा में हरो चारो मिलनो बहुत ही जरूरी है, तभी उनके जो पशु हैं वे अच्छो दुग्ध उत्पादन पर कर सकते हैं और अच्छी तरह से वे स्वस्थ रह सकते हैं। पशुओं को आवश्यक पोषक मिलना बहुत ही जरूरी है और उनकी उत्पादकता तभी बेहतर बनी रह सकती है।
0: हाँ भैया, हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के हरे चारे की खेतियों करी जाती है
1: और जैसे हमारे बहुत सारे किसान भैया जा समय देखो जा रहा है कि ज्वार है, बाजरा है, लोबिया है, नेपियर घास है, ये सब हरे चारे के रूप में अपने पशुओं के लिए खेत में तैयार करके और पशुओं के हरे चारे की व्यवस्था जो है पूरे वर्ष कर लेते हैं।
0: हाँ भैया, गर्मी के दिनों में पशुओं को हरो चारो देन से का विशेष लाभ मिलते हैं ना, जो बताओ हमारे भैया बहनों को।
1: देखो दीपा बहन, हरे चारे में प्राकृतिक नमी होता है जिससे पशुओं को राहत मिलती है, साथ ही शरीर में पानी की आवश्यकता को भी पूरा करता है और इसमें मददगार भी होता है।
0: बिल्कुल भैया, कई किसान भैया अभी भी केवल सूखे चारे पर ही अधिक निर्भर रहता है, लेकिन भैया देखो जाए तो जवाब गलत है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हरा मतलब पानी, हमारे गर्मी हमें लग रही है, अगर हम सूखी चीज खाएंगे तो हमारे शरीर में और कमी हो जाएगी पानी की।
1: दीपा बहन, और सूखा चारा भी जरूरी है हमारे पशुओं के लिए, लेकिन संतुलित आहार के लिए हरे चारे को समावेश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों को उचित और संतुलित पशुओं के लिए लाभकारी रहता है। संतुलित पोषक जो प्रबंधन हमारे किसान भैया करते हैं, पोषण प्रबंधन में सभी चीजें समावेश करके अपने पशुओं को खिलावेंगे तो उनके पशु जो है वो स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल भैया, हमारे शरीर के लिए हर चीज जरूरी है, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हरे चारे को असर दिखाई देते भैया।
1: और पौष्टिक हरो चारो जो है मिलने से पशु अधिक स्वस्थ बनो रहता है और उनकी जो सामान्य रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी बेहतर बनी रहती है।
0: हाँ भैया, अब कई किसान भैया साल भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विशेष योजनाओं बनाए दिखाई दे रहे हैं। पहले का ही कि जब चारो होतो तई होतो हम व्यवस्था नहीं बना पाते, लेकिन अब हमारे किसान भैया बहनों सतर्क हो गए हैं।
1: सही बात कही आपने दीपा बहन, अलग अलग मौसम के अनुसार चारे की खेती करने से पशुओं के लिए पूरे वर्ष पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारे किसान भैया इस तरह से वे अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, कृषि विज्ञान केंद्र और पशुपालन विभाग भी किसानों को जब विषय पर जानकारी भी समय समय पर उपलब्ध कराए रहे हैं।
1: बिल्कुल दीपा बहन, और किसी तरह से हमारे किसान भैया के लिए अगर जानकारी ना है तो भी कृषि विभाग के माध्यम से भी और जो उनके केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से भी सलाह ले सकते हैं। और दीपा बहन, नई जानकारी और वैज्ञानिक सलाह को अपनाकर किसान भाई पशुपालन को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, गांव की महिलाएं भी पशुओं की देखभाल और चारे की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती देखी है भैया आप तो।
1: सही बात कही दीपा बहन आपने, और पूरे परिवार के सहयोग से ही पशुपालन को सफल बनाओ जा सकता है और पशुओं को समय पर संतुलित आहार उपलब्ध भी कराया जा सकता है। देखो दीपा बहन, जब घर में चार लोग हैं और चारों ही लोग मिलकर अपने पशुओं की देखभाल करेंगे तो उनके पशु जो हैं वे
0: स्वस्थ दिखाएंगे, बिल्कुल।
1: और अगर एक ही किसान भैया के ऊपर सारों पशुओं को काम को जो बोझ लाद देंगे तो वो अच्छी तरह से काम ना कर पाएंगे और पशु उनके कभी भूखे रहेंगे, कभी प्यासे रहेंगे।
0: बिल्कुल भैया, स्वस्थ पशु ही किसान भाई की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है।
1: बिल्कुल दीपा बहन, इसलिए पशुओं को नियमित रूप से पौष्टिक हरा चारा दें और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और ध्यान देना बहुत जरूरी माना जाता है।
0: हाँ, तो किसान साथियों, आज के कृषि जगत कार्यक्रम में हमने जानू कि पशुओं के लिए हरा चारा कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या क्या लाभ हैं।
1: और सबसे जरूरी बात यह है कि पशु के संतुलित आहार में हरे चारे को अवश्य शामिल करें और आवश्यकता पड़े तो कृषि और पशुपालन से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह जरूर ले लें।
0: बिल्कुल भैया, तो हरे चारे की उचित व्यवस्था करके पशुओं को स्वस्थ रखा जा सकता है और पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ किसान भैया अपने पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य के और हरे चारे पर विशेष ध्यान देंगे।
1: और दीपा बहन देखो, आज दिन है
0: बृहस्पतिवार को भाई,
1: हम आज के दिन अपने सभी किसान बहन के लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं, कृषि पत्रिका खेत कल्याण।
0: खेत कल्याण भैया
1: आज भी लेकर आए हैं, और कृषि पत्रिका खेत कल्याण, तो शुरू करते हैं कृषि पत्रिका के खेत कल्याण को।

0: और दीपा बहन देखो, हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए कृषि पत्रिका खेत खलिहान में लेके आए हैं। सबसे पहले सभी किसान भाइयों के लिए एक जानकारी, कृषि समाचार,
1: बिल्कुल भैया।
0: जिसमें हमारे बहुत सारे किसान भैया देखो जा रहे हो, जैसा मैं धान की नर्सरी की रोपाई की तैयारी में है, और इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता के साथ धान की नर्सरी तैयार करने और रोपाई को कार्य तेज होने से कृषि विभाग किसानों को प्रमाणित बीज, संतुलित उर्वरक के प्रयोग की सलाह देते हैं।
1: बिल्कुल भैया। और जय बात, इसी तरह मक्का की फसल मऊ विशेष ध्यान, खरीफ मक्का की बुवाई जारी है भैया। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखना जरूरी है तथा बीज उपचार के लिए बाद में ही बुवाई करें ताकि रोगन को प्रकोप कम हो जाए।
0: बिल्कुल। और अगर हम फल उत्पादकों के लिए बात करें तो उनके लिए सलाह दी जाती है कि आम, लीची और अमरूद के बागों में वर्षा के कारण फफूंद जनित रोग भी बढ़ सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह से छिड़काव जरूर कर लें।
1: बिल्कुल भैया। और हम सब्जी की बात करें तो सब्जी उत्पादकों के लिए सुझाव है, बरसात के मौसम में लौकी, तुरई, भिंडी और खीरा जैसी फसलों पर जर भराव ना होने दें, समय समय पर निराई गुड़ाई को विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल। और यहीं पर बात करें हम पशुओं के बारे में, तो पशुओं के लिए समाचार है कि बरसात में पशुओं के रहन के स्थान को साफ और सूखा रखें, हरे चारे के साथ संतुलित आहार दें और पशुओं को नियमित टीकाकरण जरूर करा लें।
1: बिल्कुल भैया। और बात करें कृषि योजनाओं की, तो किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए अपने दस्तावेज अपडेट रखने और नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है भैया।
0: बिल्कुल। मौसम सलाह के अगले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किसान भाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर अपने खेतों में जो भी कार्य हैं उनकी एक योजना बना लें।
1: बिल्कुल भैया।
0: इस तरह से हमारे किसान भैया जो कृषि समाचार है उस विषय में हमने जानकारी अपने किसान भाइयों को दे दी, लेकिन अब हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आए हैं कृषि पत्र का खेत खलिहान में ही पशुओं में संक्रामक रोग व बचाव और उपचार।
1: हाँ भैया, तो जब भेंट वार्ता कृषि पत्रिका खेत खलिहान के अगले पड़ाव में है, तो आप भैया क्यों ना हम अपने भैया बहनों को जब भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी दे दें।
0: और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रजनीश राणा, आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा जी।
2: किसान साथियों नमस्कार। खेतीबाड़ी का कार्य हम सभी लोग करते हैं और खेती के साथ ही साथ हम पशुओं को भी पालते हैं, वो चाहे खेतों पे काम करने वाले पशु हों या फिर दुधारू पशुओं की बात करें। कभी कभी कुछ समस्याएं हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं पशुओं में, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। कौन कौन सी समस्याएं हैं, बीमारियां कौन कौन सी हैं, विशेष रूप से वे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश राणा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जब पशुओं को कोई बीमारी लगती है तो उसका मौसम का भी असर रहता है, जाड़े की बीमारियां कुछ और होती हैं, गर्मी की कुछ और होती हैं, और ज़्यादातर बीमारियां गर्मी और बारिश के दौरान की होती हैं। कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं और विशेष रूप से जो दुधारू पशुओं में ज़्यादा पनपते हैं?
3: जी किसान मित्रों, पशुपालकों, आजकल जो गर्मी और बरसात का मौसम जो कि आने वाला है, उसमें कुछ प्रमुख पशु रोगों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः मुँह पका, खुरपका, बकरी प्लेग, बकरी या भेड़ की चेचक, इसके अलावा घुरका, जिसमें मुंह से घुर घुर की आवाज़ आती है, जिसको कि अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, और आंत्रशोथ। ये चार पांच कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो कि आने वाले मौसम में हमारे पशुपालकों को परेशान कर सकती हैं।
2: जी अब ये बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से अलग अलग पशुओं में आपने बताई हैं कि बकरी की कुछ बीमारियां हैं, भेड़ की अलग है, और जो हमारे कैटल हैं, गाय भैंस हैं, इनकी हैं। और इन रोगों के नाम जो आपने बताए हैं, इनके लक्षण क्या हैं, कैसे हमारे किसान भाई इनको पहचाने कि अमुक रोग है इस पशु में?
3: जैसे हम सर्वप्रथम मुँह पका, खुरपका की बात करेंगे।
2: हाँ।
3: ये एक संक्रामक रोग है जो कि विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से फैलता है, और खासकर जो दो खुर वाले पशु होते हैं, गाय, भैंस, गोवंशीय पशु जिनको कहते हैं।
2: हाँ।
3: इसमें मुख्यतः ये रोग पाया जाता है, और इसमें जो मुख्यतः लक्षण जो हो देखने में आता है वो एक तो शरीर का ताप 103 से 105 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है, इसके साथ ही साथ मुंह में छाले और मुंह में खून की नलियां जो जबान पर होती हैं वो एकदम संक्रमित हो जाती हैं और मसूड़ों में लालामीपन और इसके साथ ही साथ खुरों में घाव, पैरों में घाव, पशु लंगड़ाने लगता है, मुंह से खाना नहीं खा पाता, अत्यधिक लार गिरती है। इसमें संकर प्रजाति के पशु सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं
2: जी।
3: लगभग 80 से 100% तक संक्रमण पूरे रेवड़ में फैल सकता है
2: जी। डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका उपचार आसानी से हो जाता है और पशुओं को कोई समस्या नहीं होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका उपचार बहुत मुश्किल होता है, जिनका बचाव ही उपचार है, बचाव ही बेहतर होता है, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनसे बचना बहुत जरूरी है, उनकी जानकारी पशुपालकों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है ताकि वो बीमारी ना हो, उससे पहले उसके बचाव कर लिया जाए।
3: ऐसा है, इसमें कुछ अन्य बीमारियां जिसकी हम चर्चा करेंगे
2: जी।
3: PPR
2: हाँ,
3: अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, हिंदी में बकरी प्लेग कहते हैं, बकरियों में मुख्यतः मिलता है। इसमें लगभग मृत्यु दर 100% तक आंकी गई है, जरा भी संक्रमण कहीं से आया
2: हाँ,
3: और पशु जरा भी कमजोर हुआ तो उसमें यह संक्रमण तुरंत तेजी से घेरता है और सारे का सारा रेवड़ 4 से 5 दिन में साफ हो जाता है
2: जी।
3: इसमें शरीर का ताप पशुओं का 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसकी खास पहचान मुंह में छाले, जवान पे छाले, लंगड़ाहट नहीं देखने को मिलती, लेकिन पशु तेजी से कमजोर होने लगता है, आंख और नाक से गाढ़ा शराब गिरने लगता है, जुखाम बहुत तेजी से फैलता है। शुरू में शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा, उसके बाद 101 डिग्री फारेनहाइट लगभग पहुँच करके दस्त के लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं और धीमे धीमे पशु 4 से 6 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है
2: जी।
3: इसके साथ ही साथ बकरी और भेड़ चेचक, घुरका आदि बीमारियां, आंत्रशोध, ये भी

0: बहुत ही तकलीफ देती हैं। घुर्रका खासकर बड़े पशुओं में होता है।
1: जी
0: इसमें गले में सूजन मुख्यतः खासियत दूर से पहचानता है पशुपालक, हम लोग पहचान सकते हैं, और इसके साथ ही साथ निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, जिससे घुर घुर की आवाज़ आती है। इनके खासकर पीपीआर का तो हम टीकाकरण यदि कराते रहें बरसात से पहले तो बहुत लाभदायक रहता है। पहला टीका 3 से 4 माह पर बकरियों को, और उसके बाद सालाना पुनरावृत्ति कर
1: जी
0: सकते हैं। 3 वर्षों में एक बार भी टीके का प्रचलन है। ये निर्भर करता है कि यदि मादा माँ यदि टीकाकरण उसका हो चुका है तो बच्चों में 3 साल के बाद टीका लगवा सकते हैं, और यदि पशु का हमको पता नहीं लग पाता, कहीं पशुपालक हमारे उनको बेच देते हैं,
1: जी
0: तो उसमें सालाना पुनरावृत्ति कर सकते हैं, उसमें कोई कोई संशय नहीं है।
1: जी और गाय भैंसों की बात करें तो उसमें कौन सा ऐसा रोग है जो बड़ा खतरनाक है?
0: उसमें मुख्यतः अभी बरसात के मौसम में घुर का, जिसको कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, बहुत देखने को मिलेगा। ये बहुत ही खतरनाक रोग है और इसमें लगभग 80% मृत्यु दर आंकी गई है। इसमें टीकाकरण ही बचाव है। यदि हम समय पर बरसात से पहले टीकाकरण करवा लें
1: जी
0: तो बहुत ही अच्छा रहता है।
1: हाँ
0: तापमान इसमें भी शरीर का 103 से 105 डिग्री फारेनहाइट, गर्दन पर सूजन जैसा कि मैंने पहले बताया, और 1-2 दिन में ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जैसे ही रोग के लक्षण आए तुरंत हमको उचित उपचार के लिए एक योग्य पशु चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए।
1: अच्छा, तो ये तो बात रही कि इस बीमारी से सावधानी बहुत जरूरी है लेना, कि इससे पहले हम उसका टीकाकरण करवा दें ताकि इस बीमारी से बच सके, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, दूसरे पशुओं में भी फैलती है, इसलिए आवश्यक है।
0: जी
1: यदि किसी कारणवश टीकाकरण नहीं हो पाता है और जो पशु है वो रोग के चपेट में आ जाता है, तब क्या कर सकते हैं?
0: पशु यदि रोग की चपेट में आ ही जाता है तो फिर उस स्थिति में हमको उसमें एंटीबायोटिक दवाएं,
1: जी
0: शरीर के ताप को घटाने के लिए दवाएं और दर्दनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम तमाम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनाती हैं,
1: जी
0: और उसको उचित पशु चिकित्सक की देखभाल में ही उनको लगवाना चाहिए, और बिना ज़रूरत के इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है।
1: जी तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है और कोशिश
0: जी
1: यही करनी चाहिए कि टीकाकरण करवा लें ताकि बीमारी पनपने पाए। अब
0: जी
1: बात हम करेंगे गर्मी की, क्योंकि गर्मी में कुछ विशेष समस्याएं पशुओं में होती हैं जो कि गर्मी और लू की वजह से होती हैं, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पनप सकती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, बचाव कैसे हो सकता है?
0: जी हाँ मित्रों, ये आपने बड़ा सही सवाल किया, और हमारे पशुपालकों को इसके बारे में जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मई और जून के महीने में थोड़े बहुत दिनों में ही लू चलना शुरू हो जाएगी। इसमें मुख्य समस्या हम देखते हैं दस्तों की और अफरा।
1: जी
0: दस्त ये छोटे बछड़ों में एक आम समस्या होती है। गर्मी की वजह से शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, तो सफ़ेद या पीले रंग के दस्त होना एक आम बात होती है।
1: जी
0: पशु सुस्त हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। बछड़ों के शरीर का तापमान सामान्यतः 100 से लेकर के 101 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। ऐसे बछड़ों को जिनमें ये समस्या देखने को मिले दस्त की, उसको तुरंत स्वस्थ रेवड़ से तुरंत अलग कर देना चाहिए। एवं जीवाणु रोधी तथा शरीर के ताप को शमन करने की जो दवाएं, जिसको कि हम एंटीपायरेटिक अंग्रेजी में कहते हैं, ये देना शुरू करना चाहिए। लेकिन ये सभी योग्य कुशल पशु चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। और खासकर मित्रों, हम अपने घर पर भी इलेक्ट्रोलाइट का घोल बना सकते हैं जो कि शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसमें मैं आपको बताऊं, 2 चम्मच हम रोज़मर्रा का खाने वाला नमक ले सकते हैं, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच ले सकते हैं, चीनी 4 चम्मच, सभी को मिला लें लगभग 1 लीटर पानी में। और बड़े पशु जो होते हैं उनको उनको 2 से 3 लीटर
1: जी
0: पानी हम पिला सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, और छोटे पशुओं में 0.5 से 1 लीटर पानी दिन में 2 से 3 बार पिला सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पशु चिकित्सक की देखरेख में ही नॉर्मल सिलाइन या डेक्सटोज सिलाइन, जिसको कि हम आम भाषा में बोतल कहते हैं, वो चढ़वा सकते हैं।
1: जी
0: इससे पशु को तुरंत राहत मिलती है। इसके साथ ही साथ हम अफरा भी बहुत देखने को मिलता है, जिसको कि अंग्रेजी में ब्लोट कहते हैं। अचानक पेट में गैस का बनना और पेट का फूल जाना, इसको अफरा कहते हैं। गर्मी में लू में अचानक पाचन तंत्र के अनियमित होने पर यह समस्या आमतौर पर उत्पन्न हो जाती है। अफरा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि ये पशु के पेट के बाईं तरफ के रूप में ही उभार के रूप में बनता है। तो इसमें हम देसी इलाज भी कुछ कर सकते हैं, दवाई तो हम करेंगे ही बाद में, लेकिन तारपीन का तेल 10 से 15 ml और इसमें मिलाकर के 50 से 100 ml करीब सरसों के तेल को पशु को पिला दें तो उसको तुरंत राहत मिलती है। इसके साथ ही साथ यदि इसकी व्यवस्था ना हो सके तो हींग 5 से 10 ग्राम ले लें, जो घरों में खाने में इस्तेमाल होती है
1: जी,
0: उसको लगभग 100 मिलीलीटर पानी में मिला करके घोल के पिला देने पर भी पशु को तुरंत आराम मिलता है।
1: ये सावधानी बरतनी है यदि ऐसी कोई समस्या हो जाती है, और चूंकि गर्मी के मौसम में ये कॉमन होता है इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए पशुपालकों को। गर्मी में और लू के प्रकोप के कारण इस संक्रमण बहुत जल्दी होता है। जो भी भोजन और पानी हम अपने पशुओं को देते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसका प्रबंधन कैसा होना चाहिए? कुछ लोग तो सामान्य पानी या समझते हैं कि जैसा पानी उपलब्ध है, चाहे वो नाली का पानी हो चाहे वो तालाब का पानी हो, पशुओं को पिला देते हैं। कितना नुकसानदायक है ऐसा?
0: ये बहुत ही नुकसानदायक होता है मित्रों। जैसे हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, साफ पानी चाहिए, साफ भोजन चाहिए, वैसे ही अपने पशु के उत्पादकता को अच्छा बनाए रखने के लिए, उनसे लाभ लेने के लिए उनकी भी हमको वैसी ही सेवा करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कुछ चंद बातों को यदि हम ध्यान रखें तो पशुओं से बहुत ही अच्छा उत्पाद लिया जा सकता है। जैसे कि उनको हमेशा गर्मी में छाया स्थान, छायादार स्थानों पर ही बांधें, पीने हेतु हमेशा प्रचुर मात्रा में साफ जल दें, दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं, हवादार स्थान पर बांधें और उनके हमेशा मल मूत्र की निकासी की एक उचित समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश में हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ जहाँ पशु निवास करते हैं वहाँ कीचड़ और दलदल कदापि न हो, जिससे मच्छर पनपेंगे और वो बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु में फैला देंगे
1: जी।
0: अधिक गर्मी लू में हमेशा ध्यान रखें मित्रों, पशु हमेशा तनाव में आ जाते हैं जिससे उनकी उत्पादकता पर बहुत ही गंभीर असर पड़ता है। तनाव के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि पशु का हाँफना, उनकी श्वास दर, सांस लेने की जो स्पीड है वो बढ़ जाना, पानी अधिक पीना, भूख का घटना, पशु का सुस्त होना एवं लार का गिरना इत्यादि। तो हम यदि उनको छायादार स्थानों पर बांधेंगे और धूप ढलने पर ही हमेशा पशु का दुग्ध निकालें। ये देखा गया है वैज्ञानिक तौर पर कि यदि गर्मी में दूध को निकालें और थोड़ा सा दिन ढलने पर दूध को निकालें तो 0.5 से 1 लीटर प्रति पशु के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है
1: जी।
0: ये वैज्ञानिक तौर पर
1: पाया गया है।
0: और हमेशा ध्यान रखें पशु का चारा एवं पानी हमेशा स्वच्छ हो। यदि नाद उनकी एक जगह पर फिक्स है तो उसमें हमेशा चूने का लेप करते रहें, जिससे उसमें कीटाणु ना पनपें, उनमें काई कभी ना लगे। और इसके साथ ही साथ पशु को गर्मी में ज़्यादा लंबी दूरी पर ना चलाएं। हमेशा ध्यान रखें यदि पानी का स्रोत आपके पास नहीं है, यदि दूर लेकर के जाना है तो सुबह या तो ठंडे में लेकर के जाएं या दिन ढले पर लेकर के जाएं, और उनको स्वच्छ पानी से नहलाते भी रहें जिससे पशु प्रसन्न रहते हैं।
1: इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चलते चलते टीकाकरण के बारे में एक बात हम और अपने पशुओं तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि टीकाकरण समय से नहीं हो पाता है और किसी कारण अगर संक्रमण हो जाता है तो फिर बड़ी घातक बीमारियों की चपेट में उनका पशु आ सकता है।
0: हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। टीकाकरण, ये जो मैंने चारों पाँचों बीमारियाँ बताई, जैसे कि मुँहपका, खुरपका और घुर्रका
1: जी,
0: और ये बड़े पशुओं में मुख्यतः बीमारी देखी जाती हैं। छोटे पशुओं में बकरी प्लेग है जिसको PPR कहते हैं, और पॉक्स जिसको कि बकरी या भेड़ चेचक कहते हैं, और आंत्रशोथ एंटीरोटोक्सीमिया, इन सभी के टीकाकरण उपलब्ध रहते हैं। अपने निकट पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर के इनका टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये कि अमूमन 3 से 4 महीने के पशु
1: जी
0: में सबसे पहला टीका लगता है, उसके बाद उसके 1 महीने बाद बूस्टर लगता है, और उसके बाद जैसे मुँहपका, खुरपका में है, हर 6 से 9 माह में टीकाकरण करवा सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के टीके होते हैं, ये टीके के ऊपर निर्भर करता है। बकरी प्लेग में सालाना पुनरावृत्ति होती है। पॉक्स का जो टीकाकरण होता है ये भी 3 से 4 माह के पशुओं में होता है, उसके बाद सालाना पुनरावृत्ति होती है। आंत्रशोथ का टीका भी सालाना पुनरावृत्ति होती है, और घुर्रका के टीकाकरण भी 3 से 4 माह में शुरू कर देना चाहिए। 3 से 4 माह में टीकाकरण यदि हम शुरू करवा देंगे अपने पशुओं का, तो उनमें प्रतिरोधक क्षमता रोग के प्रति पनपना शुरू हो जाती है, और पशु इन आम समस्याओं से जो कि रोग के कारण उत्पादकता घटना और उनकी मृत्यु, उससे हम पशुपालक बच सकते हैं।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार हमारे पशुपालक अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, तो यदि बीमारी कुछ होती है तो डॉक्टर से संपर्क करके उनका इलाज करवा सकते हैं। सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण से, बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकेंगे। बेहतर जानकारी के लिए डॉक्टर रजनीश राणा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: दीपा बहन। देखो, अभी हमने सभी किसान भैया और बहनों के लिए सुनवाओ, अपने सभी किसान भैया जो हैं उनके लिए पशुओं में संक्रामक रोग और उससे बचाव और उपचार विषय को हमारे किसान भैया ने जान लो हो, लेकिन अब हम अपने सभी किसान भैया के लिए जब बता दें कि जानकारी दे रहे डॉक्टर रजनीश राणा जी और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा जी। और दीपा बहन देखो, अब कृषि पत्रिका खेत कल्याण के अगले पृष्ठ पर हम लेकर आए हैं
3: मनोरंजन भैया, बिल्कुल।
2: तो आज हम अपने सभी किसान बहन के लिए सुनवा रहे हैं एक प्यारो सो लोकगीत, नाजुक नरम कलाई रे, शशि लता जी की आवाज में।
3: हाँ भैया,
2: लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कुछ संदेश।
3: बिल्कुल भैया।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भैया बहनों, अभी लोकगीत में आपने सुनो सचिनता को, और अब कृषि पत्रिका खेत खलिहान में हम अगले पृष्ठ पे लेके आए हैं विशेषज्ञ की राय। धान की रुपाई कुछ खास बातें जानकारी देंगे श्री अभय सिंह। भैया आपने काका बातें करी हैं तो क्यों ना जान लें।
1: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक विशेषज्ञ विशेषज्ञ की राय में, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे फसलों में सामयिक कृषि विषय पर। तो सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे आपका परिचय।
2: किसान भाइयों, मेरे नमस्कार, मैं कृषि विभाग में अवैसी संभाग मिला तिलपत रामपुर से बोल रहा हूँ
1: जी। तो इस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, उन्होंने तमाम तरह की फसलें लगाई रखी, और उसमें कौन कौन से ऐसे फसलों में सामयिक कृषि कार्य किए जा सकते हैं, उस विषय पर तार से जानना चाहेंगे। जैसे इस समय धान की फसल लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं किसान भाइयों से, तो उनमें कौन कौन से ध्यान रखें कामकाज के लिए।
2: देखिए किसान भाइयों,
1: जी
2: इस समय का जैसा ही आप देख रहे हैं, बरसात अभी कम हुई है, धान की रोपाई चल रही है
1: जी।
2: लेकिन किसान भाइयों को हम सुझाव देते हैं रोपाई शुरू करवाएं, लेकिन जो उर्वरक है उनका बेसन रूप में एक संतुलित मात्रा में प्रयोग कराना है
1: जी। जी
2: आवश्यकता से अधिक नहीं डालना है, लेकिन संतुलित अनुपात के रूप में डालना है
1: जी,
2: जिससे लागत में कमी आएगी और उत्पादन आपका बढ़ेगा
1: जी।
2: क्योंकि रोपाई के समय उसके बाद में यदि डालते हैं तो पूरा फायदा किसान को नहीं मिलता, तो बेसन के रूप में आपको प्रयोग करना है
1: जी, बिल्कुल।
2: दूसरी बात यह है कि जो रोपाई करवा रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि दो दो पौधे की रोपाई कराएं
1: जी,
2: एक वर्ग मीटर में कम से कम 35 जगह पौधे रोपाई हो
1: जी।
2: क्योंकि यदि वर्ग मीटर के हिसाब से हमारी 450 बाली कम मिलती है तो हमारी पैदावार घट जाती है, क्योंकि अक्सर देखा गया क्षेत्र में रोपाई ठेके पर कराते हैं और वो जो है वर्ग मीटर में कम पौधे रोपाई करते हैं, जिसके कारण हमको पौधों की संख्या कम मिलती है और पैदावार घट जाती है। तो जो भी किसान भाई आप रोपाई करा रहे हैं, आपने स्वयं करा रहे, सभी ध्यान रखें, और यदि ठेके में फिर करा रहे हैं रोपाई
1: जी जी,
2: तो नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब वर्ग मीटर में हमारे कम से कम 30-35 जगह पौधे रोपाई हो जाए, दो दो पौधे की रोपाई हो
1: जी, बिल्कुल, जिससे कि एक पौधा सूख जाए तो दूसरा बचा
2: रोपाई। कभी कभी क्या होता है, बहुत से पौधे घास के रोपाई हो जाते हैं, जड़ टूटे हो जाते हैं, लेबर लगा देती है, ऐसी स्थिति में ये है कि हम यदि देख रहे हैं तो पौधा वहाँ नहीं है तो गैप फिलिंग कराने का भी काम, जिनकी रोपाई हो गई है
1: जी
2: उसमें पौधा गैप फिलिंग भी करें, क्योंकि यदि पौधे किसी कारण से आपकी घास की लग गई है या पौधे जड़ टूटी लग गई है

0: है कि हमें खरपतवार नाशी डालना आवश्यक है।
1: बिल्कुल
0: यदि नहीं डालेंगे तो खरपतवार ज्यादा हो जाएगा और निकाय का इतना पैसा आ जाएगा, खर्च होगा क्या, उसकी लागत किसान की बढ़ जाएगी।
1: सही बात है सर।
0: तो उसके लिए दवाई इस समय बाजार में प्रेटेक्लोन के नाम से है, मचेटी के नाम से है, इसको आप लें और रोपाई के आपके दूसरे दिन या तीसरे दिन तक ही खेत में पानी भर रहे हैं। एक बात किसान भाई ध्यान रखें कि जिस समय आप उस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं उस समय खेत में पानी हो
1: जी,
0: दोबारा खेत में पानी ना भरें, क्योंकि यदि पानी भरेंगे तो जो परत जमती है पानी के लेयर पे तो एक तरफ लेयर इकट्ठी हो जाएगी और फिर घास से उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जब लेयर बन जाएगी तो ये खरपतवार को जमने से रोकती है। यदि वो लेयर हम पानी दोबारा देकर के उसको एक तरफ बहा देंगे तो फिर आपकी दोबारा घास की समस्या आ जाएगी और आप किसान को पूरा फायदा नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। और
0: किसान भाई समय दवाई डाले उस समय पानी खेत में हो लेकिन दोबारा पानी न भरे,
1: बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, किसान भाइयों ने कुछ और भी फसलें लगा रखी हैं जैसे सब्जी वाली फसलें हैं और सरकारा वाली फसलें जैसे गन्ने की बात करें तो इस तरह की और भी फसलें हैं, तो उनमें भी और कौन कौन से ऐसे सामायिक कार्य करे जा सकते हैं?
0: अगर सब्जी वाली फसल लगाई है
1: जी जी,
0: उसमें भी आपको देखना है क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं बरसात नहीं हो रही है
1: जी,
0: पानी की आवश्यकता है तो समय से पानी लगाते रहे और कोई भी स्प्रे आपका जो उसका क्या कहते हैं आपका केमिकल का जो रासायनिक जो आपका है उसका कोई भी स्प्रे आपको नहीं कराना है। यदि आप सूखी खेत में कराएंगे तो उससे फसल आपकी झुलस जाएगी और आपका पूरा
1: कमजोर हो जाएगा,
0: कमजोर आपका खेती खराब हो जाएगी। इसलिए स्प्रे करते समय आप ध्यान रखें कि खेत में नमी होना आवश्यक है।
1: बिल्कुल
0: यदि नमी है तभी आप स्प्रे कराएं, शुद्ध बना कराएं
1: जी जी।
0: हाँ ये आपको ध्यान रखना है और नमी की व्यवस्था बनाए रखें। ये किसान भाइयों से याद दिया जाता है क्योंकि अभी बरसात हुई नहीं है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जिससे आपकी जो सब्जी वाली फसल है या गन्ने की फसल है वो देख रहे हो काफी पत्ती मीठी पड़ी है गन्ने की भी।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: तो ऐसी स्थिति में ये है कि आप पानी का विशेष ध्यान रखें और नमी बनाए रखें
1: अपनी फसलों में, इस तरह से आप व्यवस्था बनाए रखें। गर्मी ज्यादा होने की वजह से फसलें झुलस रही हैं और जो फसलों के झुलसने की समस्या आ रही है वो तो बारिश होते ही समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जरूरत यह है कि नमी को बनाए रखें,
0: नमी बनाए रखें और सूखे में स्प्रे किसी का न कराएं।
1: जी जी इस बात का विशेष ध्यान रखना है,
0: ध्यान रखें
1: जी।
0: और जो अभी पानी की मात्रा जो रिकमेंडेशन है उससे भी कम पानी लगाए वहाँ भी ऐसी स्थिति आती है
1: जी।
0: जैसे लिखा है कि आपको 500 लीटर पानी लगना है तो 300 प्रति आपका एकड़ आ गया
1: जी,
0: और यदि आप उससे कम पानी डालते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव आपकी करना पड़ेगा, इसलिए रिकमेंडेड अनुसार जो पानी है उसी जो करवा।
1: जी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी।
0: किसान भाइयों को मेरी नमस्कार और बहुत बहुत आपको सभी का धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दीपा बहन देखो अभी हमारे सभी किसान भैया और बहनों ने सुनो विशेषज्ञ की राय में धान की रोपाई कुछ खास बातें विषय की जानकारी दे रहे श्री अभय सिंह SMS मिलक जिला रामपुर। और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी किसान भैया ने जो धान की रोपाई करना चाह रहे हैं जानकारी हासिल कर ली होगी, लेकिन अब हम अपने कृषि पत्र का खेत खलिहान के अगले पृष्ठ पर लेकर आए हैं बाजार भाव।
2: बिल्कुल भैया,
1: सब्जी के भाव के बारे में अगर हम बात करें तो आलू 510 रुपए प्रति कुंतल से लेकर 640 रुपए प्रति कुंतल और टमाटर की बात करें तो 1200 से लेकर 1320 रुपए प्रति कुंतल तक जो टमाटर हैं उसके भाव हैं, और प्याज की बात करें तो 1200 रुपए और शिमला मिर्च 1300, हरी मिर्च 1500, लौकी 1600 से लेकर 2000 तक, बैंगन 550 से लेकर 750 तक और खीरा 500 से लेकर 700 रुपए प्रति कुंटल तक भाव है।
2: बिल्कुल भैया, और हम बात करें फल की तो आम को जो फल है ना 1000 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कुंटल तक।
1: बिल्कुल।
2: बात करें केला की 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कुंटल, नींबू 3000 से लेकर 3500 रुपए प्रति कुंटल तक,
1: और गेहूं की बात करें तो हम 2580 से लेकर 2610 रुपए प्रति कुंटल तक है, और धान की बात करें तो 2300 से लेकर 2350 रुपए प्रति कुंटल है, हरी मटर की बात करें तो 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कुंटल, चावल की अगर हम बात करें तो 3100 से लेकर 3400 रुपए प्रति कुंटल तक चावल के रेट हैं।
2: बिल्कुल भैया,
1: इस तरह से तो हमारे जो किसान भैया हैं वे बाजार के भाव जान गए होंगे, लेकिन अब हमारा जो कार्यक्रम है ना कृषि पत्र का खेत कल्याण उसको समय समाप्ति की ओर है, तो हम अपने सभी किसान भैया से जब कार्यक्रम की समाप्ति कर लें
2: भैया।

0: तो देखो दीपा बहन, हमने अपने सभी किसान भैया के लिए कृषि पत्र का खेत खलिहान में बहुत सारी जानकारी कराई,
1: बिल्कुल भैया,
0: मनोरंजन कराओ, और हमारे जो भी किसान भैया हैं हमारे कृषि पत्र का खेत खलिहान को सुनने होंगे।
1: बिल्कुल भैया, हमारी कोशिश तो जय रहती है कि हम अपने भैया बहनों को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें
0: बिल्कुल
1: और वे हमारी जानकारी में से लाभ उठावें।
0: बिल्कुल, देखे जाता है हमारे बहुत सारे किसान बहन के, जैसे हमने शुरू में बात करी कि पशुओं में कई तरह के रोग ही जाते हैं, उनसे किस तरह से उनको उपचार करने हैं, उनसे किस तरह से बचाने हैं जिससे कि उनके जो संक्रामक रोग हैं पशुओं में ना फैलें और पशु स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो हमारे किसान बहन के लिए जो जानकारी है बड़े ही काम की ही। और अब हम अपने सभी किसान बहन के लिए एक और जानकारी दे दें कि जो कल को कृषि जगत कार्यक्रम है उसमें हम काका सुन पाओ।
1: बिल्कुल भैया, तो भैया वहाँ में चर्चा करेंगे फसल की पैदावार बढ़ाने में मिट्टी को महत्व,
0: बिल्कुल
1: और कृषि संघ का समाधान में पत्रोत्तर कार्यक्रम जाए,
0: बिल्कुल
1: किसानन की समस्याओं को हल करो जाए भैया।
0: और इसके बाद आपके लिए सुनवाओ जाएगा एक कृषि संकेत कार्यक्रम में, विषय होएगा औषधीय फसल सतावर से अधिक पैसा पैदावार कैसे करके लें,
1: और भैया लोकगीत से कराओ जाए उनको मनोरंजन,
0: और फिर आपके लिए मौसम की जानकारी दी जाएगी। इस तरह से तो जो कल को कृषि जगत कार्यक्रम है उसमें बारी बारी से आपको जानकारी कराई जाएगी।
1: बिल्कुल भैया,
0: और हमारे जो किसान भैया हैं हमारे कार्यक्रम में अगर कोई भी जैसे कृषि पत्र का खेत कल्याण है उसमें अधिक से अधिक पत्र डालें और फोन भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: SMS के माध्यम से भी वे अपने पत्र को शामिल कर सकते हैं। हमारे किसान भैया की अगर कोई भी समस्या है तो अपने कृषि पत्र का खेत खलिहान में पूछ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि जितने सवाल भेजेंगे हम अपने कृषि पत्र का जो है कृषि संघ का समाधान कार्यक्रम उसमें उनके पत्र को शामिल करेंगे और
1: उनकी समस्या को समाधान
0: बिल्कुल समाधान करेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसमें पूरी बात को अपने किसान भैया लिखें।
1: बिल्कुल भैया, अब भैया समय हमें बहुत ज़्यादा इजाज़त ना दे रहे हो, जो हम अपने भैया बहनों से बात करें तो क्यों ना कल के हमें हमारे कार्यक्रम को पतो बता दे, हमारे भैया बहन जो पत्र भेजेंगे पतो तो बता दे।
0: बिल्कुल दीपा बहन, देखो कृषि संघ का समाधान को का पत्र को जो पता है ना वो है
1: कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901।
0: तो जब पते पे हमारे किसान भैया पत्र भेज सकते हैं, SMS के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
1: हाँ भैया,
0: तो इस तरह से हमारे किसान भैया अपने पत्र को भेज कर और अपने जो भी सवाल हैं उनको भेज सकते हैं। और देखो जाते हैं हमारे बहुत सारे किसान बहन के जा समय खेतन में कई तरह की फसलें भी लगी हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अब समय हमें अनुमति ना दे रहा कि हम अपने सभी किसान बहन से और बातें करें। तो इसी बातें के साथ अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपने भैया अनिल के लिए दें अनुमति
1: और अपनी बहन दीपा को राम राम,
0: राम, राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में इंग्लैंड में आयोजित आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये वारिस फिल्म का गाना था। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत उत्तम जगदीश का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: अजीजा अफवाज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सेटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह यह थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति की।
1: कर चले हम पिता जा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहते

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूट ने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें,

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हों तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
1: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
0: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the President of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees, and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees, and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bengabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Center in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 AM IST. And that's the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की इस सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:45 पर हमारी पहली सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।